0: आत्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि नहीं होती, पर जिसका केंद्र शरीर में है। मृत्यु इस केंद्र का स्थानांतर मात्र है। परमात्मा एक ऐसा वृत्त है जिसकी परिधि कहीं भी नहीं है, पर केंद्र सभी जगह है। जब हम शरीर के इस समीप केंद्र से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, तभी हम परमात्मा की अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति कर सकेंगे। आत्मा न कभी आती है, न कभी जाती है, न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। प्रकृति ही आत्मा के सम्मुख गतिशील है और इस गति की छाया आत्मा पर पड़ती रहती है। भ्रमवश आत्मा सोचती रहती है कि प्रकृति नहीं, वही गतिशील है।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ यह आकाशवाणी टनगर का अरुण FM है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारे आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं आपकी रेडियो साथी RJ पूरा दुनिया आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूं। श्रोताओं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता बी बोरवा। आज सन 2024 की जुलाई महीने की 15 तारीख है और दिन है बुधवार। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। अब इस शुभकामना के साथ कि आपका दिन खुशियों और सफलताओं से भरी हो, आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, आज की पहली प्रसारण सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए आपको जानकारी दे देते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। 6:40 पर आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार। 6:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। अपतन श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 7:10 पर।

7:15 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, 7:35 पर आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार, 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार, सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से

प्रसारित नोटिस न्यूज। हेलो टनगर कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह के 8:40 पर। 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को।

सुबह 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्मी गपशप। 10 बजे आप फिर एक बार जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 10:10 पर प्रसारित होंगे आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को।

तो दोस्तों ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

श्रोताओ, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: வைஷ்ணவி. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष 771 मिलियन

0: डॉलर से अधिक का था, उससे पहले वर्ष ये 679 मिलियन डॉलर था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंगम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
2: This is one of first FTA of its kind, which establishes a future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
1: More from our correspondent.
3: This agreement has been designed as a people-centric agreement that delivers benefits across society. The simultaneous enforcement of the CETA and the DCC will open up significant new opportunities for India's export. Indian exporters will benefit from the complete elimination of UK tariff across several key sectors. Tariffs of up to 70% on processed food products, over 21% on marine products, around 18% on engineering goods and auto components, up to 16% on leather and footwear products, around 12% on textiles and clothing will be reduced to zero. This will significantly enhance the competitiveness of Indian exporters in the UK market, generate new opportunity for farmers, fishermen, MSMEs and manufacturers, and strengthen India's integration into global value chains. With Rohan Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Minister of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks being offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium,

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी नगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे बालिंग परम और पार्टी की आवाजों में दोनी पोलो डिवोशनल सॉन्ग।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बालिंग पर्म और पार्टी की आवाजों में दोनी पोलो भक्ति गीत। यह आकाशवाणी तनागढ़ का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे गालो श्रोताओं का समाचार।
1: आकाशवाणी इटानगर हिलो तेन पोल गे लोई गो ला लोंगो नान यिरने आर होक गालो मेंकेन आगम मेलेन जि दखनांगो दक्षा पेते इजा नेतिब वेस्ट एशिया लो योना डेवलपमेंट गो इदुद अगम नेरी गवर्नमेंट अलिब जिबरो बजिला येदुनाक अमला मेंतु नेरी गवर्नमेंट मेला

जिस तो अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। गालो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां हम बात करते हैं हमारे स्वस्थ जीवन शैली की और साथ ही सुनवाएंगे आपको कुछ चंद खूबसूरत नगमे।

तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम। और आज इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे कुछ योग आसनों और उनके फायदों के बारे में। योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन देने की एक प्राचीन कला मानी जाती है। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस, बॉडी पेन, नींद की कमी और थकान जैसे कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में योग एक ऐसा साथी बन सकता है जो शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। तो चलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कुछ योगासन और उनके फायदों के बारे में, जो बिगिनर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है।

सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार के साथ, जिसे योग का एक संपूर्ण अभ्यास माना जाता है। सूर्य नमस्कार एक आसन नहीं बल्कि 12 अलग अलग योग मुद्राओं का एक क्रम है, जिसे लगातार किया जाता है। इसका अभ्यास सुबह उगते हुए सूरज की ओर मुख करके करना सबसे उत्तम माना जाता है। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, इससे मांसपेशियां मजबूत बनती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये हार्ट को स्वस्थ रखने, मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने और वेट मैनेजमेंट में भी सहायक माना जाता है। इसके साथ ही सूर्य नमस्कार से दिन की शुरुआत ऊर्जा, ताजगी और पॉजिटिव सोच के साथ होती है। अगर इसे सही तरीके से और नियमित रूप से किया जाए तो ये शरीर और मन दोनों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सेतु बंदासन की, जिसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इस योगासन में पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ते हैं और कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाया जाता है। ये कमर, हिप्स और थाइस की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, साथ ही रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है और पीठ दर्द में भी राहत पहुंचा सकता है। इस योगासन से चाटी भी खुलती है और सांस लेने में आसानी महसूस होती है।

और अब बात करते हैं सुखासन की, जिसे इजी पोज भी कहा जाता है। ये एक बहुत सरल और शांत बैठने वाला योगासन है, जिसमें पैरों को क्रॉस करके सीधा बैठा जाता है और हाथों को घुटनों पर रखा जाता है। इस योगासन को ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। सुखासन करने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, पोस्चर सुधरता है और मानसिक तनाव कम होने लगता है। जो लोग मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन आसन माना जाता है।

इसके बाद आता है ब्रजासन, जिसे थंडरबोल्ट पोज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा योगासन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है। ब्रजासन को पाचन क्रिया यानी डाइजेशन सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये गैस और एसिडिटी की समस्या में राहत पहुंचा सकते हैं।

और साथ ही शरीर को शांत करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से ब्रजासन करने से लोअर बैक पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है। और अब बात करते हैं पश्चिम मोतासन की, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड के नाम से भी जाना जाता है। इस योगासन में पैर सीधा रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए पैरों को छूने की कोशिश की जाती है। ये योगासन रीढ़ की हड्डी, कंधों और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच देने में मदद करता है, साथ ही पीठ दर्द, स्ट्रेस और शारीरिक थकान को कम करने में भी ये काफी लाभदायक माना जाता है। इस योगासन से मन को शांति मिलती है और नर्वस सिस्टम को भी आराम पहुंचता है।

दोस्तों, मैं आगे आपको और भी योगासनों के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और सुनते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का पहला गीत स्त्री तू से, खूबसूरत गीत। इस गीत को गाया है विशाल मिश्रा और सचिन जिगर ने।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां हम बात कर रहे थे कुछ योग आसनों और उनके फायदों के बारे में। और अब बात करते हैं बदकोनासन के, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। शरीर के लोअर बॉडी हिस्सों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर तितली के पंखों की तरह घुटनों को ऊपर नीचे हिलाया जाता है। इस योगासन हिप्स और थाइस को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। और साथ ही महिलाओं के लिए भी ये योगासन काफी उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को कम करने में मदद करती है। वही अर्थ मत्स्येन्द्रासन, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है। इस योगासन में शरीर को कमर से मोड़कर एक तरफ घुमाया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है और पीठ और कमर के जकड़ को कम करने में सहायक माना जाता है। इस योगासन को डाइजेशन सुधारने और पेट के अंदर के अंगों को एक्टिव रखने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। नियमित रूप से इस योगासन को करने से शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होती है।

तो दोस्तों, योग को अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, मसल स्ट्रांग होते हैं और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही योग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने, नींद को बेहतर बनाने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में भी सहायक माना जाता है। नियमित योग से पोस्चर इम्प्रूव होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और क्रॉनिक पेन यानी लंबे समय के दर्द में भी राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, योग हमेशा धीरे धीरे और सही तरीके से करना चाहिए। किसी भी योगासन को जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल न करें। अगर किसी को गंभीर दर्द, सर्जरी या कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर या सर्टिफाइड योगा ट्रेनर की सलाह जरूर लीजिएगा।

तो दोस्तों स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत माय नेम इज खान फिल्म से सजदा। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना लकी अली की आवाज में, सफरनामा। इसी के साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आपातानी श्रोताओं का समाचार।

Yo New Delhi ho Puisle Lanbo Atami Media Briefing Bila Lukola Mute Ho Iran ka Deputy Chief of Mission Mi Yolala Statement Kone Malami Bila Mute Hela Ho Teran Malami India ke Delhi ho ke Hirpui Mi Bikola Mute Later Lukola Mudo Ho Indian Mu Ter Seka Burupiacha Muslaka Mukoho Sedo Hela हो खबे गंडा का म्यू अतंतरे उने तेरे गला मदो हला मिस्टर जेसवाल लुकोला मत इंडियाला मालदीव्स गंदानी क्रिपमोमी आयापा मुबासदुपा प्री ट्रेड एग्रीमेंट मी मुसदुपा दुतुन रोंगे का दुकुनसला मको हो अनो आयापा तलसला लुजसला मत हला कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मिनिस्ट्री के दली होक लुकोला मदो होसका मीटिंग दुकुमी इनेकुन सप्ताह हो Virtual Mozpa Musla Mutu Hosaka pre trade agreement me Muskoda Ganda Nyeka economics Ano Ayapa Hatachala Linedo Hela Lukola Mudo Indian Arminka Sela Brigade H Diranka Separ Limbaho Plague of Ceremony Program Kunemi Mugla Mutu Hosaka Ceremony Program Mukoho West Kaming District Deputy Commissioner Dr. Dilip Kumar 46 Infantry Brigade Ka कमांडर ब्रिगेडियर राहुल मिश्रा दिरांग का एडीसी चौकी दंडूप गांवबुरा गांवबुरी पंचायत लीडर्स ला स्टूडेंट का अनाव अतंह दुबोला मत होसका प्ले ग्रुप सेरेमनी प्रोग्राम मी जांगला दिरांग का बॉर्डर लिंबा अतंहोक निकाहेला मिनियांगवे स्टूडेंट्स अतंग का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 मिका पास लाला हिमाचल प्रदेश का उच्च पार्क सैनिक स्कूल हमीरपुर होका एडमिशन पायला का मको होपा मगला मते होसका स्टूडेंट अतामी इंडियन आर्मी अताह मो लुका आउटरीच प्रोग्राम दली होकला पूरी गला कोचिंग बिला मते कृषि विज्ञान केंद्र तवांग हे बुलो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आयकर का फाउंडेशन दे आलोक पा इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कम आयकर फाउंडेशन दे सीरीज प्रोग्राम कोनेमी जंग हो मगला मते होसका प्रोग्राम मग को हो जंग तिंबू ब्लॉक का युतुंबू ला दुंगसे लिंबा अन्य हो के अन्यंग वह हैला मिदिं कानुए परमर्स अतंह आला पार्टिसिपेट मोबोला मते हो मोलुमी मॉडर्न एग्रीकल्चर का दिगोमी साइंटिस्ट अतंह लुकोगला मते इंडियन आर्मी का स्पीयरहेड गनर्स अतंह ऑपरेशन सद्भावना का के दली होक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कोनेमी मगला पुखे पोर्टेबल मोबाइल टॉयलेट इपाकोमी मोतुम सिगरला मेवोका बेनिफिशरीज म्यू अतामी खेला मते होसका प्रोग्राम मग को हो सर्कल ऑफिसर सीनियर आर्मी ऑफिसर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव्स विलेज अथॉरिटीज स्कूल ऑफिसर्स ला लोकल कम्युनिटी का मेंबर्स अतांह दुबोला मते मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर दली होक पपुमपरे डिस्ट्रिक्ट मी खताला अरुणाचल प्रदेश का अजाहेला यांगवे डिस्ट्रिक्ट अतांका ताचोलेने गंडासको अतांहो अजारो मुताबदोला अनो उरोपा मदोहोला मने दो हेला येलो अलर्ट मी बिकोला मदो इंडियंस वुमेन्स क्रिकेट टीम हे लॉर्ड होका वुमेन्स टेस्ट मैच हेतजापा हेकासला मकोहो इंग्लैंड टीम मी लाने हेला कानखांगे रानपा बुलो दामिला मते हो यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर मनसुख मंदविया लोद होका हेजापा का वुमेन्स क्रिकेट टीम का डंकासला मको हो इंडियन वुमेन्स टीम का दामिला का मनमी अनो आया दो हला मोक दली होक असंदलाला हिंपुमी बिकोला मदो होसका दामिला का मनह आयुदायपा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम मी सुपुन चिंपा चिंकांदोपा लिकिंदो हला मिनिस्टर अनोहिंपला लुकोला मुदो सरोका पुलुकसन हमकने सी आकाशवाणी इटानगर सिसी तनुविषय मी मलिम्बली कप्योपा मुनु संगोलिम्बोल कासा लका बिस्नेमी तपाकिंदो

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आपातानी श्रोताओं का समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज की यानी 15 जुलाई की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और साथ ही राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।

चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम, और कार्यक्रम के आरंभ में झांकते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 15 जुलाई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 15 जुलाई की ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। जुलाई 1099 को फर्स्ट क्रुसेड के दौरान क्रुसेडर सेना ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जेरूसलम में क्रुसेडर किंगडम की स्थापना हुई। ये मध्यकालीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और विवादित घटनाओं में से एक मानी जाती है। 15 जुलाई 1799 को नेपोलियन की सेना के एक फ्रेंच सिपाही ने इजिप्ट के रोसेता शहर के पास प्रसिद्ध रोसेता स्टोन खोजा। इसे शिलालेख की मदद से वैज्ञानिक प्राचीन इजिप्शियन हेरोग्लिफिक लिपि को पढ़ने और समझने में सफल हुए। इसी खोज ने इजिप्ट के प्राचीन इतिहास को समझने के नए द्वार खोल दिए।

15 जुलाई 1916 को बोइंग की स्थापना विलियम बोइंग ने अमेरिका में की। आज बोइंग दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनीज में से एक है, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट, डिफेंस सिस्टम्स और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। 15 जुलाई 1975 को अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ की सोयुज स्पेसक्राफ्ट का संयुक्त मिशन लॉन्च किया। कोल्ड वॉर के दौरान ये दोनों देशों का पहला साझा अंतरिक्ष मिशन था, जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय शुरू किया।

15 जुलाई 1955 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस सम्मान की घोषणा की। नेहरू जी ने आजादी के बाद भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नींव देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके नेतृत्व में आईआईटीज, बड़ी डैम्स और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जैसे कई राष्ट्रीय निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू हुए। 15 जुलाई 1926 को बॉम्बे में आज की मुंबई में पहली मोटर बस सेवा शुरू की गई। इससे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक नया युग शुरू हुआ। बस सेवा ने आम लोगों के लिए यात्रा को ज्यादा आसान और सस्ता बनाया और आगे चलकर मुंबई के विकसित पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की नींव रखी।

दोस्तों इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। अब कार्यक्रम में सुनते हैं पहला गीत हिना फिल्म से अनारदाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। और इस गीत के तुरंत बाद हम नजर डालेंगे राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर।

दोस्तों, ये नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, फ्रेश रेन्स बेटर्स पोरमोर डिस्ट्रिक्ट्स, तागक सिक्स स्पेशल सेंट्रल पैकेज फॉर फ्लड हिट अरुणाचल। लगातार हो रही बारिश ने अरुणाचल प्रदेश के चार और जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई स्थानों पर भूस्खलन, सड़कों को नुकसान और यातायात में बाधा देखने को मिली है। इसी बीच राज्यसभा एमपी ताई तागक ने केंद्र सरकार से बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्य के लिए विशेष राहत और पुनर्वास पैकेज की मांग की है। अगली हेडलाइन है, फ्लैश फ्लड्स वॉश अवे ब्रिज इन करादडी, 8 विलेजेस कट ऑफ। करादडी जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण कुमे नदी पर बना 84 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बह गया। इस घटना के बाद ताली असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के कम 8 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। प्रशासन द्वारा राहत और कनेक्टिविटी बहाल करने का काम जारी है। हाइटल प्रोजेक्ट्स नियर चाइना बॉर्डर गेट्स ग्रीन क्लियरेंस। केंद्र के पर्यावरण विशेषज्ञ पैनल ने सियांग और सियोमी जिलों में सियोम नदी पर प्रस्तावित 1000 मेगावाट 9 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है। भारत चाइना सीमा के नजदीक स्थित इस प्रोजेक्ट को ऊर्जा उत्पादन और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली हेडलाइन है, अरुणाचल साइंस एमओयू विद नॉर्वे टाइडल सेल एस फॉर रिवर काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल एस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत का पहला रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रभाव से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादित की जा सकेगी। ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अगली हेडलाइन है, आईएमडी वार्न्स फॉर हैवी रेनफॉल ओवर अरुणाचल प्रदेश। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी और अति भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। लोगों को नदियों के किनारे न जाने, भूस्खलन प्रभावित इलाकों से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। मेगा फूड पार्क टू बूस्ट एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। राज्य में हाल ही में शुरू किया गया मेगा फूड पार्क किसानों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए एक बड़े स्वागत माना जा रहा है। इससे कृषि उत्पादन की प्रोसेसिंग, स्टोरेज और मार्केटिंग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे। अगली हेडलाइन है, दारक बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी फॉर्म्ड। वेस्ट सियांग जिले के दारक गांव में बायोडिवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी का उद्देश्य स्थानीय जैव विविधता का संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायत और स्थानीय लोग भी इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जेएनसी रिलॉन्चेस मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल अरुणाचल विजन। पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज ने अपनी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जर्नल अरुणाचल विजन को दोबारा लॉन्च किया है। इस जर्नल का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट से जुड़े रिसर्च, इनोवेशन और एकेडमिक स्टडीज को एक मजबूत मंच प्रदान करना है। महाविद्यालय ने उम्मीद जताया है कि इस शोध और वैज्ञानिक सोच को और बढ़ावा मिलेगी। राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से कश्मीर में तो कन्याकुमारी। इस गीत को गाया है सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन ने।

इसी के साथ ही दोस्तों मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

दोस्तों, अभी आपने सुना तागिन श्रोताओं का समाचार। तागिन श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम सदाबहार का, तो चलिए शुरू करते हैं सदाबहार कार्यक्रम। कार्यक्रम में खूबसूरत गीत के साथ सुनते हैं पहला गीत कन्यादान फिल्म से लिखे जो खत तुझे, मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार। आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आराधना फिल्म से मेरे सपनों की रानी, जिसे गाया है किशोर कुमार ने।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, इसी के साथ ही सदाबहार कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी तनागर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नोटिस न्यूज। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। हम लौटेंगे 8:40 पर।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर

0: ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
2: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रिग्नैनी पांडे।
0: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही VVG रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

0: जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह

0: द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच पे सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक्की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम गिर बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, पैक्ट अनलॉक्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर नियरली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। Sent announces 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. Government to launch a tranche of auction for critical and strategic mineral blocks today. US resumes blockade of Iranian ports in response to Iran's attacks on commercial ships in Strait of Hormuz. In football, Spain storm into final of FIFA World Cup after 2-0 victory over France. Argentina to take on England in the second semi-finals tonight. And in cricket, India beat England by 6 wickets in the first ODI of the 3-match series at Edgbaston.

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सुबह के इस भाग में लीजिए प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हलौता नगर कार्यक्रम में। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुनते हैं शादी में जरूर आना फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। मैं हूँ साथ तेरे।

जी हाँ प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। और दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं कुछ ऐसे विचार जो हमारी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और आसान बना सकता है। दोस्तों, जिंदगी में हम सब कभी न कभी कोई न कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा वक्त बिताना हो, काम को टालना हो, या फिर बिना सोचे समझे अपने समय बर्बाद करना हो। लेकिन सवाल ये है कि इन आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसका एक खूबसूरत जवाब हमें जापान की कुछ जीवन दर्शनों यानी फिलोसफीज में मिलती है। आज बात करते हैं जापान के कुछ ऐसे फिलोसफीज जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और सबसे पहले बात करते हैं हारा हाचीबू की। जापान के ओकिनावा क्षेत्र में लोग इस सिद्धांत को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते आ रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है, पेट 80% बढ़ने पर ही खाना रोक दीजिए, यानी इतना खाइए कि भूख मिट जाए, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि खाने के बाद उठना भी मुश्किल हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब हम धीरे धीरे और जरूरत के हिसाब से खाते हैं तो शरीर को भोजन पचाने में आसानी होती है। इससे मोटापे, डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी कई समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है। लेकिन हारा हाचीबू सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये हमें जीवन का एक बड़ा संदेश देता है। हर चीज में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की आदत धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए कब रुकना है ये समझना भी उतना ही जरूरी है जितना शुरू करना।

अब बात करते हैं काई जेन की। काई का मतलब है बदलाव और जेन का मतलब है बेहतर, यानी हर दिन अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाना। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से 2 घंटे एक्सरसाइज करेंगे, पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे या मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएंगे, लेकिन बड़े इरादे अक्सर कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। काइज़न कहता है कि बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है। अगर आज आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हैं, कल 12 मिनट पढ़िए। अगर आज 20 मिनट हुआ करते हैं, अगले हफ्ते 25 मिनट कीजिए। ये छोटे छोटे सुधार देखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन समय के साथ यही छोटे छोटे कदम एक बड़े परिवर्तन में बदल जाते हैं। इसीलिए सफलता का राज एक ही बार में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। अब बात करते हैं इकीगाई की, जो शायद जापान की सबसे मशहूर फिलोसफी है। इकीगाई का मतलब है वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह खुशी और उत्साह के साथ उठते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम होता है जो उसे अंदर से खुशी देता है और जीने का मकसद देते हैं। जब इंसान को अपना इकीगाई मिल जाता है तो मुश्किलें भी उसे रोक नहीं पाती। काम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं रहता बल्कि एक जुनून बन जाता है। चाहे आपका सपना

एक अच्छी नौकरी पाना हो, अपने परिवार को खुश रखना हो या समाज के लिए कुछ अच्छा करना हो, वही आपका इकिगाई बन सकता है। इसीलिए कभी कभी खुद से पूछिए, ऐसा क्या है जो मैं बिना किसी दबाव के भी करना पसंद करता हूँ या करती हूँ? शायद वही आपके जीवन का असली मकसद हो।

छोटी फिलॉसफी है वाबी-साबी, जो हमें सिखाती है कि दुनिया में कुछ भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। हम अक्सर अपनी छोटी छोटी गलतियाँ या खामियों को लेकर परेशान रहते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, लेकिन वाबी-साबी कहता है कि खूबसूरती सिर्फ परफेक्ट चीज़ों में नहीं बल्कि उन चीज़ों में भी होती है जिनके पास अपनी एक कहानी होती है, जैसे पुरानी किताब, पुराना घर या मिट्टी का बना हुआ बर्तन। इसी तरह हर इंसान की खामियां भी उसके अनुभव और उसकी पहचान का हिस्सा होती है। इसीलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। जब हम अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं तब हम बिना किसी डर के आगे बढ़ पाते हैं।

और अब आखिर में बात करते हैं गान बारों की। इसका मतलब है हालत चाहे जैसा भी हो अपना पूरा प्रयास करते रहना। गान बारों हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और धैर्य से मिलता है। हर सफर में ऐसा दिन आते हैं जब लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन गान बारों का संदेश है हार तब नहीं होती जब आप गिरते हैं, हार तब होती है जब आप उतने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। इसलिए हर नई सुबह को एक नए मौके की तरह देखिए और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की आदत बनाइए।

दोस्तों याद रखिए, जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन लिया गया एक छोटा सा सही फैसला कल को जरूर बदल देता है। और इस उम्मीद के साथ कि आज की बातें आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगी, चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और सुनते हैं बचना है हसीनो फिल्म से आहिस्ता आहिस्ता, लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

इसी के साथ ही दोस्तों आज का हेलो द नगर कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए कई अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले वर्ष मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है और विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण

0: और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लिडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी पूरी कर ली है। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमरीका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। होर्मुज जलडमरू मध्य में 2 व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही जरूरी है।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सही। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में श्री जोशी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करेगी। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमरीका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey.
3: This is one of first FTA of its kind, which establishes future-oriented economic architecture between the two major economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing till date. Because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc.
2: Center has announced 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. The package was announced by Union Agriculture and Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan in Kolkata yesterday after chairing a high-level review meeting with West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. The meeting reviewed 19 major infrastructure projects worth over 82,000 crore rupees in the roads, railways, metro, petroleum, natural

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म में गपशप, जहां हम आपको देते हैं सिनेमा की दुनिया की ताजा खबरें, नई रिलीज फिल्मों की हालचाल, ओटीटी अपडेट्स, बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों की गपशप और साथ ही सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत नगमे। तो चलिए फिल्म में गपशप कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत गीत के साथ। सुनते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का, प्यार के कश्ती में उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। तो दोस्तों सबसे पहले आइए नजर डालते हैं ओटीटी की दुनिया की ओर, जहां हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो। राजकुमार हिरानी की ओटीटी डेब्यू सीरीज अपनी कॉमेडी, मिस्ट्री और साइबर क्राइम की इंटरेस्टिंग मिक्स की वजह से व्यूवर्स का खूब अटेंशन ग्रैब करी है। अगर आप लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट के साथ सस्पेंस भी एंजॉय करना चाहते हैं तो प्रीतम एंड पेड्रो जरूर देखिएगा। और मिस्ट्री की बात हो रही है तो एनोला होम्स का नया चैप्टर भी ओटीटी लवर्स के बीच काफी पॉपुलर बना हुआ है। एनोला एक बार फिर नए केस को सॉल्व करने निकली है और ऑडियंस को मिल रही है सस्पेंस और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वहीं ट्रू क्राइम फैंस के लिए प्राइम वीडियो पर मर्डर 101 भी काफी बज क्रिएट करी है। रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये डॉक्यूमेंट्री व्यूवर्स को शुरुआत से लेकर एंड तक बांधे रखती है। और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेंट देखना पसंद करते हैं तो कोरियन फैंटेसी थ्रिलर द ईस्ट पैलेस और एप्पल टीवी प्लस की सस्पेंस ड्रामा लकी वी इस हफ्ते ओटीटी की ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है।

और साथ ही दोस्तों बॉलीवुड लवर्स के लिए भी ओटीटी पर कुछ इंटरेस्टिंग रिलीज लाइनअप में है। सबसे पहले बात नेटफ्लिक्स की, जहां सनी देओल और अक्षय खन्ना के कोर्टरूम ड्रामा इक्का स्ट्रीम हो चुकी है, और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा। कोर्टरूम के अंदर के इंटेंस टक्कर और दमदार परफॉर्मेंसेस इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है। इसके बाद नेटफ्लिक्स पर चांद मेरा दिल का भी ओटीटी प्रीमियर होने वाला है। रोमांस और इमोशन से भरपूर ये फिल्म काफी वक्त से ऑडियंस की वॉच लिस्ट में बनी हुई थी। वहीं कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए पति पत्नी और वो दो भी ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म हल्का फुल्का ह्यूमर और फैमिली ड्रामा का मजेदार कॉम्बिनेशन लेकर आएगी, और एक फिल्म जिस पर बॉलीवुड फैंस की नजरें टिकी हुई है वो है बंदर। इस फिल्म की ओटीटी प्रीमियर को लेकर काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है और व्यूवर्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड के दीवाने हैं तो आने वाले दिनों में ओटीटी पर भी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है। बस अपनी वॉच लिस्ट रेडी रखिए और विंज वॉच का मजा लीजिए। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर और सुनते हैं ये जवानी है दीवाने फिल्म का दिल्ली वाले गर्लफ्रेंड अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

0: I cannot sleep.
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
3: दोस्तों, रुन एफ एम 3.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप कार्यक्रम, जहां बात होती है बॉलीवुड की सबसे गर्मा गर्म खबरों की। और दोस्तों, इस हफ्ते थिएटर्स में हंसी का फुल ऑन डोज लेकर आई है धमाल 4, जो 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को डायरेक्ट किया है इंद्र कुमार ने और इस बार भी धमाकेदार स्टार कास्ट नजर आ रहे हैं। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी, जावेद जेफरी, संजय मिश्रा, रवि किशन, ऐशा गुप्ता और कई और जबरदस्त कलाकार आपको देखने को मिल जाएगी। कहानी एक और क्रेजी ट्रेजर हंट का राउंड घूमती है, जहां कंफ्यूजन, कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की भरमार होती है। अगर आप बिना लॉजिक के सिर्फ एंटरटेनमेंट और लाफ्टर एंजॉय करना चाहते हैं, तो धमाल 4 आपके लिए परफेक्ट वीकेंड एंटरटेनर हो सकती है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 4 दिनों में इंडिया में लगभग

दिन रिलीज हुई एक और फिल्म ने धीरे धीरे ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मैं बात कर रही हूँ फिल्म बेबी डू दाई डू की। डायरेक्टर नचिकेत सम्बंत के इस क्राइम थ्रिलर में हुमा कुरैशी लीड रोल्स में हैं। उनका साथ सिकंदर खैर, चंकी पांडे, सीमा भावा और विद्या मालवदे भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी मुंबई की एक डेफ और म्यूट कॉन्ट्रैक्ट किलर के इर्द गिर्द घूमती है जो एक डबल लाइफ जीती है, लेकिन एक मिशन गलत हो जाता है और उसके बाद राज, धोखे और सर्वाइवल की एक रोमांचक जंग शुरू हो जाती है। डार्क ह्यूमर, सस्पेंस और एक्शन का ये कॉम्बिनेशन फिल्म को एक अलग पहचान देती है। और सबसे खास बात यह है कि बिना किसी बड़े बज या मैसिव प्रमोशंस के भी फिल्म अपनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग और परफॉर्मेंसेस की वजह से ऑडियंस को इम्प्रेस करी है। सोशल मीडिया पर कई व्यूवर्स इस हफ्ते का सरप्राइज पैकेज बता रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ बड़े बजट और वीएफएक्स वाले एंटरटेनर्स ही नहीं बल्कि एक ग्रिपिंग कंटेंट ड्रिवन थ्रिलर देखना पसंद करते हैं तो बेबी डू दाई डू आप जरूर देख सकते हैं।

और दोस्तों अब जरा नजर डालते हैं आने वाले दिनों में रिलीज होने वाली कुछ फिल्मों पर। तो 24 जुलाई को बॉक्स ऑफिस पर दो बिल्कुल अलग जॉनरा की फिल्में एक साथ रिलीज होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा जाल की। अगर आपको मिस्ट्री, एडवेंचर और सुपरनेचुरल कहानियां पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए हो सकती है। फिल्म की कहानी एक लेजेंडरी खजाने की तलाश से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह सफर बदल जाता है एक ऐसे रहस्यमय जंगल में जहां पुरानी शक्तियां, भ्रम और खतरनाक राज हर कदम पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिल्म में महेश निकम, शनाया त्रिपति मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। और अब बात करते हैं द इंडिया स्टोरी की। ये एक हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा है जो देश में फूड एडल्ट्रेशन यानी खाने में मिलावट जैसे गंभीर मुद्दे को उतारती है। फिल्म में श्रेयस तलपडे और काजल अग्रवाल लीड रोल्स में नजर आएंगे। ट्रेलर्स के बाद से ही इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे को सामने लाती है जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।

और दोस्तों, अगर आप हॉलीवुड की फैंस है तो इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, वह है क्रिस्टोफर नोलन की द ओडिसी फिल्म। फिल्म ने अपनी इंटरनेशनल रिलीज से पहले ही जबरदस्त बज क्रिएट कर दिया है और अब क्रिटिक्स से भी शानदार रिस्पॉन्स मिल रही है। मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे और जेंडया जैसे बड़े स्टार्स से सजी ये माइथोलॉजिकल एपिक होमर्स लेजेंडरी कहानी को बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के रूप में लेकर आई है। खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली फीचर फिल्म है जो पूरी तरह IMAX कैमरास पर शूट की गई है और विजुअल्स की हर तरफ तारीफ हो रही है। क्रिटिक्स इसे क्रिस्टोफर नोलन की एक और ब्लॉकबस्टर मास्टरपीस बता रहे हैं।

दोस्तों ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दिल चाहता है से कोई कहे कहता रहे। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन, शान और केके ने।

0: Question. Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। और दोस्तों, वक्त है बॉलीवुड की सबसे ताजा और सबसे ट्रेंडिंग न्यूज का। तो सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर के। इन दिनों उनकी फिल्म रामायण को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। फैंस का मानना है कि यह फिल्म इंडियन सिनेमा की सबसे ग्रैंड प्रोजेक्ट्स में से एक होने वाली है। रणबीर इस फिल्म में भगवान श्री राम के किरदार में नजर आएंगे और उनके लुक्स और डेडिकेशन की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रमोट किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स का क्रेज दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं सनी देओल की। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सनी देओल एक और हिस्टोरिकल ड्रामा बटवारा 1947 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। फिल्म भारत के विभाजन के दौरान घटी घटनाओं और उस समय के जज्बात को दिखाएगी। सनी देओल के पावरफुल डायलॉग्स और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस को देखते हुए फैंस को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। यह फिल्म इंडिपेंडेंस डे के आसपास रिलीज होगी, इसलिए देशभक्ति का माहौल और भी खास बनने वाला है। और अब सलमान खान के फैंस के लिए एक अपडेट। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मच अवेटेड फिल्म मातृभूमि फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ सकती है। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सलमान के फैंस को उनकी अगली बड़ी फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल सलमान अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर पूरा फोकस कर रहे हैं और उनके नए अनाउंसमेंट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया अपनी एक्शन स्पाई फिल्म अल्फा को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। यह फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और इसमें आलिया एक बिल्कुल नए एक्शन पैक्ड अवतार में नजर आ रही है। फैंस को उनका ये बोल्ड और पावरफुल रोल काफी पसंद आ रहा है। बॉलीवुड में फीमेल लेड एक्शन फिल्म्स का ट्रेंड भी धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है और अल्फा उसी बदलाव की एक बड़ी मिसाल बन रही है।

अब जिस कार्यक्रम में बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म से धोली तारा धोल बाजे। गीत को गाया है कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौड़ और करसन सरघाटिया ने।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम लौटेंगे 10:10 पर रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के साथ।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य कैबिनेट के सदस्यों और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री चौहान ने घोषणा की कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी है। राज्य के योगदान को मिलाकर अगले साल मार्च तक पंचायतों के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण रोजगार को 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना और VBG रामजी एक्ट 2025 के अंतर्गत नया ग्रामीण रोजगार ढांचा लागू करना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल है। उन खनिजों में मोबिल्डेनिम, ग्रेफाइट, ग्लाइकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटैश, लिथियम, सीजियम और रूबीडियम शामिल है। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया

0: पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 100 अधिक अंक की वृद्धि के साथ 77,192 पर, जबकि निफ्टी 33 अंक बढ़कर 24,085 पर था। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक सी फेरर फर्स्ट पहल शुरू की है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए हॉर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। वहीं फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Subhadra Ramachandran. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as the Double Contribution Convention, DCC, also come into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey. Union Minister of Coal and Mine G. Kishan Reddy will launch the 8th tranche of auction of critical and strategic mineral blocks in New Delhi today. Ministry of Mines has said that it comprises 20 critical and strategic mineral blocks spread across 9 states, including 13 newly identified blocks and 7 blocks being offered under the second attempt. The mineral portfolio includes molybdenum, graphite, glauconite, rare earth elements, titanium, tungsten, potash, lithium, cesium and rubidium. These minerals are critical for clean energy, advanced manufacturing, fertilizers, defense and other strategic sectors. Union Port Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal today expressed grief over the demise of veteran Assamese actress Purabi Sharma. In a social media post, the minister said that her invaluable legacy in Assamese theatre and cinema will be forever cherished. Mr. Sonowal added that her demise is an irreparable loss to Assam's cultural fraternity. Domestic benchmark indices opened higher this morning amid positive global cues after gains across Wall Street and Asian markets. Sensex opened at 77,192, up more than 100 points, while Nifty started the session at 24,085.85, gaining 33 points. Sector-wise, financial and banking stocks led the gains in early trade, while information technology shares remain under pressure. The United States has resumed the blockade of Iranian ports in response to Tehran's recent attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. During an interview with TV news channel, U.S. President Donald Trump said that the Hormuz is open if people want to go through it, but not for Iran. Mr. Trump also warned Tehran as

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा।
0: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में, जहां हम पहुंचा देते हैं आपके पसंदीदा गीतों को आप तक और आपके अपनों तक। तो दोस्तों, आपसे लेकर 11 बजे तक यानी पूरे 50 मिनट सिर्फ और सिर्फ आप सभी श्रोताओं के नाम। और दोस्तों, सफर में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम। और आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है जमकर बागरा जी का, जो हमारी रेगुलर लिसनर घूमे माए बागरा जी का हस्बैंड है। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है गंगा जमुना सरस्वती फिल्म से साजन मेरा उस पार है।

गीत को उन्होंने अपनी वाइफ गुमी माई बागरा जी को डेडिकेट किया है। तो उम्मीद करती हूँ गुमी माई बागरा जी, आप इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, आपके हस्बैंड ने बड़े प्यार से आपके लिए ये गाना डेडिकेट किया है। तो चलिए ये गाना आप दोनों के प्यार के नाम पेश है, साजन मेरा उस पार है, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें आया है लंखंगसम कार्बी आंगलोंग से। टेंसन क्रो, रोजमेरी तेरोनपी, निलिका क्रोपी, अतुर क्रो और सरलो क्रो की ओर से। उन्हें सुनना है फिल्म सोटन से जिंदगी प्यार का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए सुनते हैं आपका पसंदीदा गीत, जिंदगी प्यार का गीत।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड।

0: जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
0: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
0: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366-6931-70 या 9402-8771-26 पर।
0: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, आईएमसी क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: जहां दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में। दोस्तों बता दूं, अगर आज हमारे साथ कोई पहली बार सुन रहे श्रोता जुड़े हैं तो मैं आप सबको बता दूं, रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में आप जो भी गाना सुन पा रहे हैं वो हमारे प्यारे श्रोताओं का पसंदीदा गीत है, जो वो हमें मैसेजेस के जरिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो अगर आप भी रेडियो ऑन डिमांड पर अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 9436887808। हमें आप सबका मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें आया है हिगी बागरा से, गुमे माई बागरा जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है मोहब्बत फिल्म का दिल की धड़कन कहती है। इस गीत को गाया है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने। तो गुमे माई जी, आपकी फरमाइश पर पेश है दिल की धड़कन कहती है।

दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर जो हमें आया है गोलाघाट आसाम से हमारे रेगुलर लिसनर्स रोमिस पात्रो, रोनु पात्रो और लकी जी से। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से रोते हुए आते हैं सब, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने, और साथ ही उन्होंने इस गीत को अपने कुछ दोस्तों को डेडिकेट किया है। उनके दोस्तों का नाम है बाइकॉम, अमोल, बिमोल, देवाशीष, हितेंद्र और जोगेंद्र। तो चलिए, आप सभी दोस्तों के नाम ये गाना पेश है रोते हुए आते हैं सब किशोर कुमार की आवाज में।

0: ಎನೆದು. ಅಟೆನ್ಷನ್, ಪಾರಿ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಆಪರೇಷನ್. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए. कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे. नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे. वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए. फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे. नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे. अपनी सुरक्षा अपने हाथ. सावधान रहे और सुरक्षित रहे. सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी. धन्यवाद.
1: प्यारे श्रोताओं, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. और इस वक्त आप सुन रहे हैं आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड. और अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर, जो हमें आया है नाहरलगन से लोकीनाथ रोंगहांग जी का. उन्होंने रिक्वेस्ट करी है भागी फिल्म का चम चम. इस गीत को गाया है मोनाली ठाकुर ने. लोकीनाथ जी, आपका पसंद का गाना आज के इस मौसम पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो चलिए आनंद लेते हैं आपके पसंदीदा गाना का चम चम, मोनाली ठाकुर की आवाज में.

0: दोस्तों रेडियो अंडमान पर बढ़ते हैं अगले रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है सोनपेल कुदाली असम से हमारी एक और रेगुलर लिसनर हितेंद्र दास जी का। हितेंद्र जी को सुनना है ज्वार बाता फिल्म का दाल रोटी खाओ। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

आसाम से हमारे लिसनर्स हैं जोगेंद्र रोंगपी, सोनाली इंगतीपी और धर्मक्रे रोंगपी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है भाभी फिल्म का ताई लगा के माना बन गए जनाब हीरो, और साथ ही इस गाने को उन्होंने डेडिकेट किया है अमोल बसुमतारी, बीरेन हंसे, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लक्की पात्रो, विमल बसुमतारी और असम और अरुणाचल प्रदेश के सारे श्रोताओं को। तो चलिए आप सबके पसंद आप सबकी रिक्वेस्ट पर सुनते हैं ये गाना, और बता दो इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

दोस्तों, आप सबके पसंदीदा गीतों को सुनते हुए वक्त का पता ही नहीं चला और आज के अंतिम रिक्वेस्ट पर हम आ पहुंचे हैं, जो हमें आया है देवनाथ गौर जी से और उन्हें सुनना है तेरी मेहरबानियां फिल्म से ए जबानी मोरे चुनरिया, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति ने। तो चलिए देवनाथ जी, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों इसी के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। हम कल फिर लौटेंगे आप सबके पसंदीदा गीतों के साथ रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में सुबह के 10:10 पर। दोस्तों आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों इसी के साथ ही हम आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी

कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक बी डोले तथा तकनीकी अभियंता बी बोरवा। साथ ही बता दो दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में सुबह के 11:10 से लेकर शाम के 4:20 तक और दूसरे प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी आरजे लूसी। तो दोस्तों, आप मुझे यानी आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz
2: तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
4: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
3: इस समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इसमें 9 राज्यों के 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्डेनम, ग्रेफाइट, ग्लेनोकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रूबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ ही मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की। इससे सफलता दर 63% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक केसरी जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रख रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force. Simultaneously, the Agreement on Social Security, also referred to as a Double Contribution Convention, DCC, also comes into effect today, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media New Delhi, Commerce Secretary Rajesh Agarwal described the CETA as a defining milestone in India's trade journey. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has described today as a defining milestone in India-UK relations. India will host the 12 BRICS Labour and Employment Ministers meeting in Hyderabad from today. The two-day meeting will bring together labour and employment ministers and senior officials from BRICS member countries under India's BRICS chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia will chair the meeting. The ministers will deliberate on four priority areas, including advancing social security and formalization of labour markets and enhancing women's participation and inclusion in the workforce. Uttar Pradesh will celebrate World Youth Skills Day with a grand state-level program in Lucknow today, where Chief Minister Yogi Adityanath will launch several key initiatives aimed at strengthening skill development, employment and entrepreneurship across the state. The Chief Minister will inaugurate a skill development exhibition showcasing innovative technologies, skill-based products and projects developed by industrial training institutes, ITIs, training centers and trainees. Amid escalating maritime security concerns in West Asia, following attacks on two merchant vessels in the Strait of Hormuz, Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarvanand Sonowal, chaired a high-level inter-ministerial review meeting in New Delhi. Mr. Sonowal ordered real-time vessel-by-vessel monitoring and the appointment of a dedicated liaison officer for every affected Indian seafarer in the region. The minister directed the Director General of Shipping to establish a real-time operational dashboard to track every Indian seafarer aboard vessels operating in the Persian Gulf, the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman, irrespective of the vessel's flag. India has warned that people's confidence in the United Nations is declining due to the failure to reform the UN Security Council and effectively address global conflicts. Speaking at a ministerial roundtable on making multilateralism fit for the future at the UN, India's permanent representative P. Harish said the Security Council has failed to intervene meaningfully in ongoing conflicts, raising questions about its ability to uphold international peace and security. The United States has resumed the blockade of Iranian ports in response to Tehran's recent attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. During an interview with the TV news channel, U.S. President Donald Trump said that the Hormuz is open if people want to go through it, but not for Iran. Mr. Trump also warned Tehran, saying that U.S. will knock out all power plants and bridges of Iran unless they get to the table and negotiate. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, attacked weapons and parts storage facilities in Bahrain in large-scale strikes. The IRGC also claimed that it destroyed or damaged a number of drones by attacking the ram where the MQ-9 drones were deployed at the Ali Salam base in Kuwait. Indian equity benchmark indices are trading higher today amid positive global cues after gains across Wall Street and Asian markets. Sensex opened at 77,560, up more than 505 points, while Nifty started the session at 24,199, gaining 148 points when the reports last came in. In football, Spain stormed into the final of the FIFA World Cup 2026 after producing a commanding 2-0 victory over France in the first semi-final clash at Dallas Stadium in Texas, U.S. last night. Mikel Oyarzabal opened the scoring in the 22nd minute before Pedro Porro made sure of the win with a brilliant second goal. In another semi-final clash, defending champions Argentina will face England tonight at the Atlanta Stadium. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
6: नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। मैं हूं आपके साथ आज के दूसरे प्रसारण सभा में आरजे लूसी, और इस सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तांगजांग तिमतिम। हमेशा की तरह आज भी हम इस सभा में पेश करेंगे ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और आपको बता दूं कि इससे पहले आपके साथ थे हमारे पहली प्रसारण सभा में आरजे दुनिया, तो आइए मेरे साथ चलिए इस सफर में आपकी आरजे लूसी। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम फिल्मी लहर का पहला गीत।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी लहर में। आज के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक अनोखी और म्यूजिकल फिल्म व्हाट्स योर राशि की। इस फिल्म का निर्देशन किया है आशुतोष गोवारिकर ने। फिल्म में हरमन बावजा और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। सबसे खास बात यह है कि प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म में 12 अलग अलग कैरेक्टर्स का रोल निभाया है जो 12 राशियों को दर्शाते हैं। फिल्म का म्यूजिक दिया है सोहेल सेन ने और गीतों के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस म्यूजिकल सफर। और इस फिल्म का गीत है टाइटल ट्रैक। एक खूबसूरत अंदाज में शुरू होती है रोमांटिक मेलोडी और दिल को छू लेने वाले बोल इस गाने को और भी खास बना देते हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का टाइटल ट्रैक व्हाट्स योर राशि।

आइए दोस्तों सुनते हैं ये एक बेहद ही रोमांटिक और सॉफ्ट मेलोडी जो अपनी मधुर धुन के लिए काफी पसंद किया जाता है, और ये गीत है वाचा राशि फिल्म का सूचे।

0: दोस्तों, वाचो राशि फिल्म का अगला गाना पेश है, जिसका नाम है बिखरी बिखरी।
1: लेकिन कोशिश करूंगी।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर, या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए शुरुआत करते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की, जो है वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Hello guys, and welcome to the Western Music.

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: Performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर शून्य शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे, जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
3: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के

दोस्तों, उम्मीद है कि ये गीत रितोरे बागा आपको बेहद पसंद आया होगा। अब माहौल को थोड़ा और एनर्जेटिक बनाते हैं। अगला गाना है लिफ्ट करा दे, जिसे गाया है अपनी दमदार और अलग अंदाज में अदनान सामी ने। ये गाना अपनी कैची ट्यून और फन फिल्ड गीत के बोल की वजह से आज भी हर जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर है। तो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और तैयार हो जाइए इस एवरग्रीन हिट का मजा लेने के लिए। पेश है अदनान सामी का ये सुपरहिट गाना लिफ्ट करा दे।

दोस्तों, अब पेश है एक ऐसा गीत जिसने अपनी सिंपल मेलोडी और दिल को छू लेने वाले एहसासों से हर किसी का दिल जीत लिया है। अगर आपको सूदिंग सॉन्ग्स और हार्टफेल्ट म्यूजिक पसंद है तो ये गाना जरूर आपको पसंद आएगा। सुनिए अलग आसमान, खूबसूरत आवाज में अनुव जैन के।

दोस्तों अब बारी है बेहद ही खूबसूरत गीत की और इमोशनल गीत के बोल और सोलफुल कंपोजिशन के साथ आप इसे सुनेंगे फिर से अनूप जैन की आवाज में। और इस वक्त इस समय इस गीत का नाम है हुस्न।

दोस्तों अब चलते हैं एक एवरग्रीन क्लासिक की तरफ। ये गीत अपनी सुकून भरी धुन और लकी अली की अलग पहचान वाली आवाज के लिए आज भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले था। पेश है दिल को सुकून देने वाला गीत ओ सनम।

दोस्तों, और आप सुनते हैं अरुणाचल प्रदेश के अपने टैलेंटेड सिंगर और सॉन्ग राइटर ताबा चाकी का ये खूबसूरत गीत जिसका नाम है कहानी। अपनी सोलफुल आवाज और सिंपल एकॉस्टिक स्टाइल के लिए मशहूर ताबा चाकी का ये गीत जिंदगी और एहसासों को बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान करता है। तो चलिए सुनते हैं उसका, ताबा चाकी का ये गीत कहानी।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे नॉर्थ ईस्ट परिचय, एक वारदात जहां आप सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जान रहे थे निशी ट्राइब के बारे में बेंग्या दादा के साथ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: दोस्तों अभी आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर का समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई जीवंत क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इसके साथ ही कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में बताया कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री सिंह ने कहा कि यह निर्यात को भी बढ़ावा देगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह समझौते एक ऐतिहासिक कदम है जो देश के आर्थिक हितों को मजबूत और किसान तथा कृषि क्षेत्र को सुदृढ़ करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता एक परिवर्तनकारी कदम है। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
2: This agreement would open up new opportunities.
3: यह समझौता भारतीय उद्योग जगत के लिए सामान और सेवाओं दोनों ही क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा। नवाचार और प्रतिभा की आवाजाही में सहयोग से भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में

0: क्षमता बढ़ेगी। यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इससे वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: बोथ द कंट्रीज इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम।
2: वहीं एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा कि यह समझौता भारत की मुक्त व्यापार समझौते यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जो दुनिया के दो सबसे पुराने लोकतंत्रों को एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से जोड़ता है। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भारत की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी में से एक है। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सदन में हंगामे से नहीं बल्कि सार्थक बहस और तर्कपूर्ण चर्चा से जनप्रतिनिधि अपनी पहचान बनाते हैं। वे आज राजस्थान विधानसभा के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत विधायी गौरव यात्रा कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अब तक इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सैन्य हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि अभियान के उद्देश्य पूरे हो गए हैं। खेलों में स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज एटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 372 अंक की वृद्धि के साथ 77,427 पर जबकि निफ्टी 100 अंक बढ़कर 24,152 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. The India-United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has come into force from today. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said the agreement will benefit women, farmers, youth, MSMEs, innovators, professionals and fisherfolk, creating various opportunities. In an article in an English daily, Mr. Goyal said that this ambitious agreement will empower every section of society, reflecting the capabilities and aspirations of the people of India. Mr. Goyal said that it will not only benefit just Indian exporters, but also white-collar service sector professionals across skill sets. He noted that under the agreement, nearly all of India's exports to the UK will enjoy duty-free access. The Commerce and Industry Minister mentioned that the agreement safeguards sensitive farm products such as dairy, vegetables, apples, edible oils, oats, millets, cooking oils, and others by placing them in the sensitive list and added that no duty concessions have been granted to the UK on these items. The minister noted that these exclusions reflect the government's strategy of prioritizing food security, domestic price stability, and vulnerable farming communities. Prime Minister Narendra Modi has said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, and the Agreement on Social Security, which came into force today, is a significant moment in the partnership of India-United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Marking a milestone in bilateral economic relations, the first export consignment under the new Indo-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement was flagged off in Chennai today. The British Deputy High Commissioner to Chennai, Dr. Suttappa Chaudhary, joined the officials from the Directorate General of Foreign Trade to flag off the consignment. Industry bodies have described the India-UK Free Trade Agreement as a historic milestone in India's free trade agreement journey. Secretary General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, Anand Swaroop, has said

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब वक्त है आपको ले जाने का अगले कार्यक्रम की ओर। अगला कार्यक्रम पेश है हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s to the 80s। और आज सबसे पहले हम सुनेंगे ये बेहतरीन गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने अपनी सुरीली आवाज में, और इस गीत की म्यूजिक को लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने दिया है, और इस गीत का नाम है अच्छा हुआ तुम मिल गए।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और अब हमारा खास म्यूजिकल सफर। आप सुन रहे हैं ओल्ड क्लासिक म्यूजिक 60s टू द 80s। ये वो दौर था जब सुरों में साथ की थी, बोलों में गहराई थी और हर गीत दिल की किताब का एक हसीन पन्ना बन जाता था। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश और आशा भोसले जैसे महान गायकों की आवाज आज भी संगीत प्रेमी के दिल में बसी हुई है। तो आइए अगले कुछ पलों में हम मिलकर उन यादगार नगमों का लुफ्त उठाते हैं जो आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने रिलीज के दिन थे। तो आइए आज का कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं एक बेहतरीन क्लासिक गीत जो है फिल्म मेरे महबूब का ये यादगार नगमा, ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए। अपनी शानदार शायरी और मोहम्मद रफी साहब की दिलकश आवाज की वजह से आज भी ये संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। तो चलिए महसूस कीजिए इस हसीन दौर की खुशबू के साथ, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ए हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगाए।

दोस्तों, अब वक्त है एक ऐसे गीत का जो आज भी हर महफिल की जान बन जाता है। फिल्म है द ट्रेन का सुपरहिट गाना गुलाबी आंखें जो तेरी देखें, मोहम्मद रफी साहब

0: जादुई आवाज और इसकी सदाबहार धुन के लिए हमेशा याद किया जाता है। बरसों बाद भी इस गीत की ताजगी बिल्कुल कम नहीं हुई है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए दोस्तों और लुफ्त उठाइए इस एवरग्रीन मेलेडी का। पेश है गुलाबी आंखें जो तेरी देखी।
1: शिमारू के नए वीडियोस के लिए

दोस्तों, अब पेश है और एक खूबसूरत नगमा जो अपनी मधुर धुन और दिल को छू लेने वाले बोलों के लिए याद किया जाता है। इस गीत को अपनी सुरीली आवाज से सजाया है आशा भोसले जी ने। फिल्म मेरी आवाज का ये गीत प्यार के खूबसूरत एहसास को बहुत ही नाजुक अंदाज

0: दोस्तों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों, अब बारी है एक ऐसे खास गीत की जिसे अपने जादू या आवाजों से अवर बना दिया है शुरू की दो महान बहनों लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म साधना का ये यादगार गीत अपनी खूबसूरत गीत की बोल और बेहतरीन कंपोजिशन की वजह से आज भी क्लासिक म्यूजिक के शौकीन के दिलों में एक खास जगह बनाते हैं। तो चलिए सुरों के इस अनमोल संगम को स्वागत करते हैं, पेश करते हैं मेरे महबूब में क्या नहीं, लता मंगेशकर और आशा भोसले की सुरीली आवाज में।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s से 80s का। दोस्तों अभी इस छोटे से ब्रेक के बाद आइए शुरू करते हैं हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीत।
1: अटेंशन, पारी हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: चंकना चंकना
1: शुभ थयो चंकना बेटा शुभ थयो
0: घबराई गई
2: घबराई गई है।

0: ऐसा नहीं करना चाहिए था दिल को।
1: मुझे क्या नहीं करना चाहिए?
0: इस तरह नाबालिग लड़की दिखाते हुए आपको शर्म नहीं आई?
1: कौन ये लड़की?
0: जी हाँ, अब आप और नाटक मत कीजिए, आपको सब पता है। खंडाला वाली बात की वजह से आप इस तरह बदला लेने की कोशिश करेंगे?
1: योगेश, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मुझे इस लड़की की उम्र के बारे में बिल्कुल पता नहीं है।
2: देवेंद्र भाई, योगेश भाई, सब ठीक तो है?
1: मनर भाई, आपकी बेटी की उम्र क्या है?
2: 19 साल।
0: झूठ मत बोलिए मनर भाई।
2: 15 साल।
0: आपको शर्म आनी चाहिए।
2: मुझे माफ कर दीजिए, जिंदगी भर की कमाई बड़ी बेटी की शादी में ही निकल गई, और ऊपर से ये 3 और बेटियों का बोझ, इसलिए मैंने झूठ बोला।
0: मनर भाई, मैं आप और उसकी

थैंक यू, मैं और पढ़ना चाहती थी। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्में गीत आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों, कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: conflicts, raising questions about its ability to uphold international peace and security.
1: The Security Council has been ineffective in putting an end to human suffering among the affected populations. The foundational principle for the establishment of the United Nations, maintenance of international peace and security, has therefore been called to question. The underlying reason for inadequacies of the Security Council is evident. An 80-year-old architecture designed for the 1940s is ill-equipped to address contemporary challenges. As a collective, the UN has not been able to move the needle on reforming the Security Council.
0: Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, entered the 36th consecutive day today, with thousands gathering in Rawalkot amid growing unrest. Addressing the rally, Joint Awami Action Committee leader Sardar Aman Khan accused Pakistan of forcibly occupying the region. He said POJK is an occupied territory and not a disputed territory. He vowed that the movement would continue until victory, even if protesters had to sacrifice their lives. The rally witnessed strong anti-Pakistan slogans, with demonstrators pledging to continue their agitation. Meanwhile, the United Kashmir People's National Party strongly condemned the reported killing of six civilians by Pakistani security forces during clashes in Rawalkot. The India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeast India, Bihar, West Bengal and Uttarakhand till tomorrow. Furthermore, heat wave conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for the day. According to the Met Department, hot and humid weather conditions are expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Rayalaseema and Uttar Pradesh till tomorrow. In Bihar, due to heavy rainfall in Nepal's catchment area, the water levels of the Gandak, Bagmati, Kamla Balan and Kosi rivers in Bihar have been rising continuously. In Gopalganj, the Gandak River has crossed the danger mark by 2 centimeters. More from our correspondent.
2: As the water level of the Gandak River continues to rise, 183,400 cubic water had been discharged from the Valmiki Nagar Gandak Barrage in West Champaran district by 12 noon today. By 11 p.m. last night, the discharge had reached 221,000 cubics. In view of the rising river level, the Water Resources Department has issued an alert. It has also cancelled the leave of all engineers until further orders. The district administration had advised people living in nearby areas to remain vigilant and move to safer locations if necessary. Meanwhile, in Shivhar, the rising water level of the Bagmati River has led to riverbank erosion. At several places, water has begun spreading inside both embankments of the river. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
0: And in sports, in FIFA Cup football, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final tonight at Atalanta Stadium in US. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. Last night, Spain stormed into the final, stunning France 2-0 in the first semi-final clash in Texas last night. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. Prime Minister Narendra Modi says it will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal assures sensitive farm products including dairy, vegetables, edible oils are fully safeguarded under CETA. President Draupadi Murmu calls for adopting latest techniques in Ayurveda for greater good. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction in eroding global public confidence, and red alert for heavy rain in Odisha today. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar, Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. और अब मुख्य समाचार भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों उद्यमियों लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपनी पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
5: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
3: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर

0: स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
1: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
2: The Security Council has been ineffective.
3: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
2: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप

0: और सोशल मीडिया हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को यह भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में DSP मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आग्रह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज और दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम हिट्स ऑफ द 90s में। और एक ऐसे म्यूजिकल सफर पे हम आपको ले जाने वाले हैं, जहां उन हसीन दिनों में जब कैसेट प्लेयर्स थे, वॉकमैन और रेडियो पर गीत बजते थे, तो वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। ये प्रोग्राम उन तमाम श्रोताओं के नाम है जो आज भी 90s के सुरीले गीतों को याद करते हैं। इस दौर के गाने में प्यार था, मासूमियत थी और ऐसे धुनें थी जो आज भी दिल को सुकून देती है। तो चलिए यादों के इस हसीन सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं एक बंदकार

रिन मेलोडीज। तो दोस्तों, हमारा पहला गीत प्यार की गहराइयों को खूबसूरती से बयान करता है। फिल्म मोहब्बते का ये अमर नगमा जो है हमको हमी से जुड़ा लो, लता मंगेशकर और उदित नारायण के मधुर आवाज में आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट की शान बना हुआ है। तो चलिए, दिल को सुकून देने वाला ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। पेश है हमको हमी से चुरा लो।

दोस्तों, बारी है एक ऐसे गीत की जो बॉलीवुड का सबसे खूबसूरत रोमांटिक क्लासिक्स में से एक है। फिल्म कयामत से कयामत का ये सदाबहार नगमा गजब का है। दिन अलका याग्निक और उदित नारायण की सुरीली आवाज में प्यार की मासूमियत को बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

Nachon Backward Development Project anun Eagle Butt Nest Festival na support kamanda. वहीं करा राज्यसभा एमपी ताई तागत का स्पेशल सेंटर फ्लड रिलीफ कांग अवन कांग डा अरुणाचल प्रदेश संवी कांग उन्हें करा अन कांग वन अन वन अन लैंडस्लाइड नंग ब्लॉगों टोंग फार्म तो समन अन वन रंग में 1950 वे आठ कुक मरोन पांग इम्पान ने अक्रेय का उनसे का दुगिन ट्यूसडे गा अन अनलाइक क्राइमन द मेन जगह जगह वन की पन्योर सियांग बेल कुरुम कुमे टीराप है अंसन सब वांग सं क्रम समुद्रम लोग 85,000 एकर कुंग नम तपा पा न्याय अंसन कंबोई ले डाउन तम सब करा न्याय सो पा बिग लात अंची का प्लग ने यंग कर नम सब क्रम तो वही अन पा फ्लड फरली पन अराउंडर फाइनेंस दा का जन मानुम तो वही सेंट्रल हला ना फंटी चाइम दा रा करा अब्सुसन का वन एट मेंबर कम्युनिटी फा तराने का एस आर आई समुन्हिक सुतुतांग दम तो वी गंदोम तो वी न जने थोंग से माडोम तम सका तो ही एसआर एस मन वी विग न बी टू बी चो पाक दल ने थोक माडोम तो हम सो का विंग पा वाइस प्रेसिडेंट नबम यादी डिस्ट्रिक्ट जन यूनियन न रुने का अनकाल मकसद का माडोम तो वही रा अनका मन फ्री एंड फेयर का दम तो बी पे दल ने का सा सन कंबुई वट ने का एसआर एफ का दम तो उन्हें करा अरुणाचल प्रदेश का नॉर्विंग फर्म न MOU sign kun kada an sign one 500 kilowatt river kinetic energy project kangda indian norwegian green partnership gungli samada anun an agreement one center art science and himalayan studies gungli samunda an fira an bamen m1 direct river lika kahin to chart ne ka dom ta wahi kara an pa one sign one साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस दसांगनो पोल का कुकरम सब करा अन्य वन क्लीन एंड फ्री एनर्जी ट्रांसमिशन ने क्रय का वही करा आखिर बेट टमाटर वैरायटी वन नाम सब टमाटर ने का क्रय पटो वन टमाटर का वन को यह सुबन सी है लावन आटे मोपाप ने उस साल समुद्र ने का ग्लास चंगों चंगों बुई आटे मोपाप ने पाइक नाइक्स थार्म ने क्रय पटो अन टमाटर वन आयकर विभाग हला का ट्राप टने का क्रय पटम सौ का अन वन कृषि विभाग का आय सुबन श्री हला पंग टेस्ट कने ला पोटा दा अन वैरायटी टमाटर वन ती हाक मन जका लक्ष समन दने का क्रेम तो सौ का अन फी ला चोंग चोंग ने टमाटर है पाइक से थान दम तो होली का एनईएस मतलब नॉर्थ ईस्ट एलिट सोसाइटी का वन टिकिप आई फ्रॉड समलाव है पांच लाख पायन हो कटाव दाने ना बिग लाख रह लाम सन है उन पांग रा उन पांग में ना है कि पंजाब प्रदेश में वह है ना विंग का लाभ क्या मो हो शन कटाव दाने ना बिग लाख रह लाम सन कांग उन सब करा तो विंग फा सेक्रेटरी इंजीनियर नबम तादर करने टिकी डिप्टी कमिश्नर तो यू प्यार ले रहने चेक फी कटाव सन फोन ले कट कांग ने का वहीं करा तवांग है वन कृषि विज्ञान केंद्र वनसन वन आयकर फाउंडेशन फासले बेट कंटोडा उनसा करा या तुम बक नंग गुंडेस ग्लाट थे सन 57 कुंग नंग पांग चोंग सन हुँ करा दा अन फेस्टिवल ले तुम्हारे ने का उनसा करा है तवांग है सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अजेंडर त्रिपाठी वन आयकर सन में इंडिया रा वन को उनसा एग्रीकल्चर लाइन है कुंग नंग रिसर्च कंटोड ने का क्रे का लोग का इंडियन आर्मी शेफर हाइट गनर गुगने शेफर हाइट डिवीजन 11 सिक्स पेट्रोलिक मोबाइल टॉयलेट फी कटाव दा इस सियांग है डिस्ट्रिक्ट है ऑपरेशन सावधान गुगने दा अन अन अन अन भाग वन बी ग्लाट कशोंग था है कंगन कर दा थ्री यूनिट्स वन वन मोटुंग विलेज फी कर दा ब्रा ब्रा किड वन प्राइमरी स्कूल साइगाल फी कर दा ब्रा कमो वन मेबो ग्राउंड ने फी दा रंगो हो ओए वन फ्रांस नंग स्पेन वन फीफा वर्ल्ड कप फाइनल कं सेमी फाइनल फाइनल क्लियर क्राउनिंग ओनली वन स्पेन वन फाइनल तन ऑन फ्रांस वी क्वीन के मोगा पेने का रा तो जाओ मले तो लाइक कुंग सोंग ती फाइम का यम साउ का तो कमांड तन दाटी गया चिंग आम

सम रोड कनेक्टिविटी मई औसी नम हो राज्यसभा एमपी हिची तय तगक फोंगपिन मा कनसुफ फुनटू नम लोंग खनसम निनकान तो खनसम हिंग कौपा हासिब इनसन मुनै कुन लुताय हाय का खनसम कची इंफ्रास्ट्रक्चर फीमोट का मई औसी स्पेशल सेंट्रल फ्लड रिलीफ पैकेज हंगचा मंग अरुणाचल प्रदेश हाउ मई औसी नुलेम कन हग मा का अरुणाचल प्रदेश तंग नॉर्वेजियन फॉर्म टिडल सेल एएस हंगचा को इंडिया फोर्स हापा किलोवाट रिवर किनेटिक एनर्जी डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट न इंडिया नॉर्वे ग्रीन पार्टनरशिप में औसी एमओयू ने हित साइन कनका एग्रीमेंट ने कचम वोंगकांग सेंटर फॉर अर्थ साइंस कंसम हिमालयन स्टडीज कंसम तंग चौवांग मंग अरुणाचल प्रदेश हाउ कंसम टिडल सेल एएस में औसी एग्रीमेंट ने हित कनका मुनै एम्स ने कचम हंगचा को फाई करें लुक नम खे मै औसी नम हो को निसी इलाइट सोसाइटी खाउ ngân hala phong pin ma phong tu nam long nia ti man hoj dakte dakte na turu sarkar khong jila papam pare kachi families an toyap toya ne khau mai osi ngun donate kan ha ka krisi vigyan kendra tawang khau mu nai icar foundation day इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन कम फार्मर मै औसी नियाति जंग मै मध्यम कनका मुनै प्रोग्राम ने मै कुन हित है हित ना हासिप चेत को लंग का खौ नंग कन मा का नम हो इंडियन आर्मी स्पियर हेड गनर्स न स्पियर हेड डिवीजन मै औसी हु अन पोर्टेबल मोबाइल टॉयलेट्स नै जिला इस्यांग नग ऑपरेशन सद्भावना मै पनमेंग कन हगा न हु अनपोर्टेबल मोबाइल टॉयलेट्स मै सम अन्ने कचम मन मोटुम मै हगन का सों अन्ने कचम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिगर खौ मै हगन का खनसम अनलुंग ने कचम मिबो प्लेग्राउंड खौ मै हगन का नम हो फोंग पिन कन सु फीफा वर्ल्ड कप पी मु सोंग हिंग सा हु मै मंग स्पिन खौ लुक मंग फ्रांस खौ लुक सोंग सिन मै पी कन का मु नै मंग स्पिन खौ फाइनल मैच कटिंग कन का नम हो हिची माइकल ओयर्जवल सोंगो पटामा लुक टीम स्पिन खौ सौ सोंग मिनट मै सिन लंगसका खनसम फीफा वर्ल्ड कप फाइनल ने कचम न्याटी न्यू जर्सी मिड लाइफ स्टेडियम वन ट्रांगनोई फाइखम ने मै तकलिन कन मायो मु ने मंग अर्जेंटीना खनसम मंग इंग्लैंड खौ मेनै फाइखम यान सिप सोंग नारी समसिप मिनट ए एम मै सेकंड सेमी फाइनल ने तकलिन कन मायो नम हो खनसम चा हंग मने कौ खाम ती खैनै नम हो मेने मु उइ खाम मै लुक चाउ हुलिक ता लुंगकान मै हने थोम ती खा

0: chom nang akhing nam nari no studio mai ji kan ma wa pha poi ne cha hang mane kham tai kham ti hau ti khai mai studio ho
1: श्रोताओ भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से न्यूज हेडलाइंस अंग्रेजी में मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम और ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर। दोस्तों मैं हूं आपकी रेडियो साथी और स्वागत है आपका आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स और हिंदी फिल्मी गीत में। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की कुछ ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बड़े पर्दे की। इस हफ्ते थिएटर्स में कई बड़े फिल्म दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। आलिया भट्ट और शर्वरी की स्पाई एक्शन फिल्म अल्फा को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा है कॉकटेल 2 भी अपनी फ्रेश स्टार कास्ट, रोमांटिक कहानी और म्यूजिक की वजह से काफी चर्चे में है। हॉलीवुड लवर्स के लिए सुपर गर्ल और डिज्नी की लाइव एक्शन मोआना भी थिएटर्स में एंटरटेनमेंट का जबरदस्त पैकेज लेकर आई है। अब नजर डालते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर। अगर आप फैंटेसी और एक्शन के फैन हैं, तो जियो हॉटस्टार पर आप देख सकते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन्स सीजन 2 और ये स्ट्रीम हो रहा है जियो हॉटस्टार पर, जिसका हर नया एपिसोड फैंस का इंतजार और भी बढ़ा रहा है। वहीं नेटफ्लिक्स इस हफ्ते अपनी व्यूअर्स के लिए नए इंडियन और इंटरनेशनल फिल्म्स, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज लेकर आए हैं। रोमांस हो या क्राइम ड्रामा या फैमिली एंटरटेनमेंट, हर मूड

के लिए कुछ कुछ नया जरूर मिलेगा। नेटफ्लिक्स भी इस साल इंडियन ऑडियंस के लिए लगातार नया कंटेंट रिलीज कर रही है, इसलिए अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखना मत भूलिए। तो दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट दुनिया के कुछ ताजा अपडेट्स, और अब वक्त हो गया है सुरों के सफर का। बनिए रहिए अरुण FM 103.1 MHz के साथ, क्योंकि अब लेकर हम आ रहे हैं एक बढ़कर बेहतरीन हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स का सफर। मैं हूँ आपके रेडियो साथी RJ लूसी, आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसी के साथ आप ये गीत सुनेंगे जो है लाइफ इन द मेट्रो का, ओ मेरी जान।

0: श्रोताओं, ये फिल्मी गीतों का सफर जारी रहेगा सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वांचो भाषा में समाचार। या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपके साथ आरजे लूसी आपके इस सफर में।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ 2 जुलाई लेट मा निबन्ना तारीख बुधवार इरुमा केम वांचो चाय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे। इंडिया या यूनाइटेड किंगडम्स नि बामा फनके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए का फन अनि मखांग तोले मक्साई हा फाइतमले यूनाइटेड किंगडम तो मक्साले ngoke इंडियन खनक नु खुई खप अंक हान पकमा Double Contribution Convention DCC leke ka pantole chu mokai UK hatto inden thahang satmot ma sai manla pu le phan ke chu irumati pongwang changle haya india hiya united kingdom ni ba angke chai phan ka phan nganang kap ke bo ma haya khang e khanak nu ba ma tu mai lam khau le tammok tamsa le ngong chu mayai Ministry of Donor Khang ke North Eastern Council NECA Schemes of NEC Sonic Heya North East Special Infrastructure Development Schemes NESITS ni khama Arunachal Pradesh ma khat kha kha ke development satmot buto dawang le May June 2026 let ko ni ba ma ngun banku karo lakram jau ko le haya ngun hingham satmot line not tourism lamsai ningketo dawang mayangke khama yingkyong district hingham ma nursing hostel donipolo government college ma sikonausam hostel sapariyo kicho ma tourism honui dirang ma persimmon processing center antole kharsang to hat bomju gari thamnui le aling le ring angkachu omle NECA NESITS kama lam sai phan ama yang ka han pak mchu phong ke kama nacho backward block development project chu mokla chok dau ke boma eagle nest bird festival ke ke pon po han pak mchu phong ko le rajya sabha mp tai ta ga e 1950

0: 마 KVK 엑스퍼트 스타메 하 와낭케 정작바 케도 발레 혼제 콜레 마이헤 레케 보마 사이언티픽 호르티컬처 만라이 바마추 아포노르 콜레 스피어헤드 디비전 칸케 인디언 아미 스피어헤드 가너스 탐에 홈 오퍼레이션 사드바브나 카마 이시앙 디스트릭토 포테블 모바일 토일렛 톡톡 우힝 누이 아록 요 링레 콜레 하카 앙케 모퉁 띵마 아람 시가랑케 고먼트 프라이머리 스쿨마 아니 보마 랍바우 아투 자케 호누이 한팍말레 메보 플레이그라운드 마 투탈코레 하보마 마야 US 토 텍사스 앙케 달라스 스테디움 마 아판케 봉왕 세미 파이널 마 프랑스 토 골로니 코레레 스페인 FIFA 월드컵 2026 마 파이널 토 하이나 마마호 탐 세미 파이널 카마 아야 애틀란타 스테디움 마 디펜딩 챔피언스 아르헨티나 잉글랜드 파야파네 하야 매치 아반 바나니 바지 7 미니츠 마캉에 아라파 바와이 아니 카카호 이바이 이자 아카시바니 이타나거 카 호페마 자이 파하이 호방에 타파 왕젠딩 마
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहां होती है दिल से दिल की बात और दोस्तों इस मौके पर मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जो श्रोता इस वक्त ऑफिस से घर लौट रहे हैं या जो अपने कलीग्स के साथ लंच ब्रेक एंजॉय कर रहे हैं या जो अपने काम में व्यस्त होते हुए भी रेडियो सुन रहे हैं और जो अगर घर पर अपने परिवार के साथ हमारा साथ दे रही हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्यार आपका साथ और आपका हौसला ही हमें हर रोज आपके लिए बेहतर प्रोग्राम लेकर आने की प्रेरणा देती है उम्मीद है कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे अपना प्यार और अपनी दुआएं बनाए रखेंगे और हमारे प्रोग्राम को सुनते रहेंगे अगर आपके पास भी कोई पसंदीदा गाना है या आप किसी खास व्यक्ति के लिए कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें हम आपके संदेशों और फरमाइशों का हमेशा इंतजार करते हैं तो मैं हूं आपकी रेडियो साथी अर्जुलू से दिल से एक बार बहुत शुक्रिया तो चलिए इसी के साथ आइए हमारा आज का कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स जारी रखते हैं और आप सुनेंगे ये लगे रहो मुन्ना भाई का ये गीत पल पल हर पल

दोस्तों अब वक्त है एक और एक खूबसूरत और मस्ती भरे गीत का। फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन का ये पॉपुलर गाना है छू मंतर, जिसे बिनी दयाल और अदिति सिंह शर्मा की एनर्जेटिक आवाजों में सजाया गया है। फिल्म में इमरान खान, कैटरीना कैफ और अली जफर की जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिलती है और ये गाना उसी यूथफुल एनर्जी को खूबसूरती से पेश करता है। और इस गीत को मैं एक बहुत ही खास दोस्त को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं। कहते हैं कि वो बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह खूबसूरत है और मुस्कुराहट से भरी लगती है। उम्मीद है कि ये उन्हें छोटी सी डेडिकेशन पसंद आएगी और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आएगी। तो दोस्तों सभी श्रोताओं के लिए मेरे उस खास दोस्त के नाम पेश है मेरे ब्रदर की दुल्हन का ये दिलचस्प और मस्ती भरा गीत छू मंतर।

0: သမဟောအတော်တာဘမပယ်အဲ့ချက်ဘူးချင်းဘူမနဲ့ကေပန်ရရှင်ချီထူကုန်ကုမဲတီရာပ်တိုနဲ့ယခိရှာဟိုလမဒစ်စထစ်မအိုင်ယွမ်ဘရအော်မအဟာယာဘဒနဲ့အာနစ်ပရိစ်ရာဇ္ယစဘာ MP တိုင်တာဂတ်မဲ့လာကနဲ့အညရယူဒစ်စထစ်မချေလာဂါလိုအနာရှိအစမဲ့တိဟင်ဘာအကမဟောအဇန်ဘရအီဟိုမငါဟက်တာပါကိုဘွေအဟာယာဘဒလာကတာအောကအလူမီအကြဘမမအရောကကြီးကစင်တာမဲ့အမလူကြီးစာဟာကြီးနာနဲ့တာဂတ်မဲ့လောက်ကတာအောကဒဲမ်အကြီးမီနဲ့မချေအန်ဂွန်တမနဲ့မောင်မငါကီလိုဝတ်ရီဗာကိုင်နက်တစ်အနာဂျီဒီမန်စထရေးရှင်းပရောဂျက်အကြီးတိုချီပွားအိန္ဒိယနော်ဝေဂရင်းပါတနာရှစ်ကိုကမနဲ့အာနက်ချပရက်စ်ဂေါဗမန့်မဲ့စင်တာဖော်အာဆိုင်စစ်ဒိုနဲ့ဟီမလိုင်းစတဒီစ်မဲ့နော်ဝေမချေတူတယ်ဆဲလ် AS ကို MOU အံဘဝတကပါတာအဟောကအလီအံဘဝတလမနဲ့အတိကချီအမှုမန်ဒေအနာဂျီပေချီဝဒါနဲ့ဆိုင်စ်ဒိုနဲ့တက်ကနိုလော်ဂျီမင်စတာဒါဆန်လူပူလ်မဲ့လာကတာအဟောကအိန္ဒိယမှာကြီးအလက်ရှင်ကော်မရှင်မဲ့အချဟောအာရဏချပရစ်မှာကြီးဘော်ဒါစပေါ်အချပရမ်ဘောတလာနဲ့ SR အခကမှာအော်လာနချပရစ်စတင်စနီယန်အပ်ဆုမဲ့အထလမကောဒါလာနဲ့အီယူမင်ဘာအပ်ဆုကော်မတီကအဂျီတေကဘဒါအဟောကအပ်ဆုဗိုင်းစ်ပရက်ဆီဒင့်ပရိုတိုကောနဘမ်ကန်တီမဲ့ဟေတာနေယကော်မတီမဲ့အာရဏချပရစ်အတိကဲမှာကြီးစတင်စနီယန်ဒိုနေကိစာအမှုအလံဘောအာရဂကနဲ့ SR အခဝမကကြီးဦးမီက SR အခနယမကကြီးအဟာကအဲ့ဒိုနဲ့အာနစပရစ်အတကကြီးအမှုအန်ဂျီတန်တော့ SR အမှုမနဲ့ဘော်ဒါစပေါ်မနဲ့ဟီလကကြီးမီအတူတကဲဘော်ဒါလာဟုကလောဝါစပန်စစ်ဒစ်စထရစ်မချေခရစ်စီဗီဂန်ကန်ဒရမန်အတကကြီးအပိတရဟဲအမ်ဘခီမီအာကာဘက်လိုက်ကအနာရှုမဲကအပိတကကြီးကအရောကတာအဟုကအာအနာရှုဘတတဟဲICAR မချေ IIHR ဟာရမဲ့ I am ho a anashun ba apitege mane hector ge elekhi mane yo ho ma gaton leba anashu apipuji ga da la hoga nisi life society NES mache general secretary engineer nabam takar me chinela NES member number man papum par district host dakte atikoche ahambaya ga buru ge me tando ehaya ba anashalam bro original la ne upi ati shi love song sharing atacha manga lak pong hatega bada awga am have nisi life society me kei panor district ma che bu me yahaya ba anashalam bro original la ne hu lak pong chawa bachita awga tawang district jang atiko icar ajitela ini enaga ma yuthum bu ne tongse atiko chi manga ru ingu apitemo alambro gigabada la hoga tawang kisi bigyan kendra ma che scientist heta dr anjanand tiwari done ekisha asaya alambro mem apitea imo alambro he apitei chipo aiga bada a hoga indian army spearhead division koko che spearhead gunners me operation sadbona koko mane isyang district motum atiko che government primary school ma giwa ga eta ko kani hate ai done mebo atiko che taramu ga bane khege hate ga bada a hoga atika se de akhao ga bane ali haga ji ta ne army match me la hoga fifa world cup semi final match ma ona spain me france he kani zero goal ma ne ane ga ne final ma khiga bada a hoga spain ga bane goal he michael oyar jabal ne पेड्रो पोरो में खेगता हगा बदा अहगा महो इंग्लैंड ने अर्जेंटीना एबगाचे सेमीफाइनल मैच के तो है अना नामा हुलुनी बजाना सोर मेल माने खगादा ला होगा एतनिची इदमिसमी आहो अलीमाओ दबाने एने आर्या के बा जिपजिगा बा एचा आकाशवाणी ईटानगर दिबुगर नाले इदमिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतनि हेंदो
1: एफ पुलुची चाशे छि अर्जी
2: श्रोता अभी आप सुन रहे थे इदुमिश्मी भाषा में समाचार। इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारा ये म्यूजिकल सफर जहां हम बात कर रहे थे अब मैं पेश करने जा रही हूँ एक ऐसा गीत जिसका नाम है आधा इश्क, जो है बैंड बाजा बारात से। ये सिर्फ एक रोमांटिक गाना ही नहीं बल्कि उन जज्बातों की कहानी है जो अक्सर जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हर इंसान महसूस करता है। फिल्म में अनुष्का शर्मा का किरदार एक ऐसा युवा महिलाएं का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती है, अपना करियर खुद बनाती है और अपनी पहचान को सबसे ज्यादा अहमियत देती है। इस सफर के बीच जब प्यार दस्तक देता है तो उनके दिल में चलने वाली उलझन और खुशी दोनों का एहसास इस गीत में बहुत ही खूबसूरती से नजर आता है। आज की बहुत सी यंग विमेन इस गीत और इस कहानी से खुद को जोड़ पाती हैं। करियर और रिलेशनशिप्स के बीच बैलेंस बनाना, अपने सपनों को जिंदा रखना और दिल की बात को समझना, ये सब इस गीत के एहसासों में कहीं ना कहीं झलकता है। तो चलिए आइए सुनते हैं ये गीत बैंड बाजा बारात फिल्म से आधा इश्क।

दोस्तों, अगला गीत उन सभी प्यारे श्रोताओं के नाम है जो इस वक्त सफर में है। अगर आप कार चला रहे हैं या रोड पर कहीं जा रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि गाने का लुफ्त जरूर उठाइए, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखिए। आराम से ड्राइव कीजिए, सीट बेल्ट जरूर लगाएं और सुरक्षित तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचिए। और जो दोस्तों अभी भी अपने काम में व्यस्त है, आप सभी को दिल से सलाम। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, आपको अपना काम पूरा करने की ताकत और हौसला मिलता रहे। और जो ऑफिस से घर लौट रहे हैं, दुआ है कि आप सुकून से घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ कुछ प्यारे पल बिता सकें और एक अच्छी सी आराम भरी शाम का आनंद लें। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं ये फिल्म बर्फी का ये गीत।

0: तो दोस्तों आइए इसी के साथ हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ आज के सफर में आरजे लूसी और आप सभी को ये कार्यक्रम पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तांगजांग तिमतिम। तो दोस्तों जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी तीसरी प्रसारण सभा के लिए आरजे सुलोकना स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ हमारा ये म्यूजिक का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ बने रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
2: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

डियर लिसनर्स, अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्स तथा DRM 666 किलोहर्ट्स पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। और दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: एक बार फिर से नमस्कार डियर लिसनर्स। दिन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और शाम अपने साथ लेकर आई है सुकून, ताजगी और कुछ बेहद खूबसूरत एहसास। ऐसे ही सुहावने माहौल में आप सभी का रेडियो की इस महफिल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इससे पहले दूसरी प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे लूसी के संग और अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर आप सभी के संग बनी रहूंगी। सुरों के कारवा, मीठी मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस सुरीले सफर को आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैरते तथा तकनीकी अभियंता तानातुम। तो चलिए इस शाम की शुरुआत करते हैं। अब से कुछ ही पलों में प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

यसिर देसाई और उनके साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये बेहद ही प्यारा नगमा हम तो दीवाने। और इसी सुरीले नगमे के साथ ही शुरुआत हो चुकी है ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, यूजुअली मैं इस अंक में आपके लिए छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तीन खास बातें जो शायद हम सभी को कभी ना कभी पीछे खींच लेती है। आज कोई कहानी नहीं, बल्कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जिन पर अगर हम गौर करें तो जिंदगी को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं।

दोस्तों, जिंदगी एक है, आज ही खुलकर इसे जीने का मजा लीजिए, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद करिए। आज ऐसी बातें हम आपसे साझा करेंगे जो शायद आपके लिए फायदेमंद हो। पहला पहला ये कि जो लोग आपसे नफरत करते हैं वो आपके बारे में ठीक ही सोचते हैं, ये जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करते।

तीसरी बात, परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो, ये जरूरी नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है। ये जीवन आपका है, आप इसके मालिक हैं। आपके द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय, हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है, किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन है, इसे आप अच्छे से परखिए, सही निर्णय लीजिए और अपने तरीके से व्यतीत करिए।

0: Good evening, ইটানগর.
1: तो दोस्तों कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के आज के इस अंक में बस इतना ही. 4:45 होते ही आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और फिर आप सुन पाएंगे

0: नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव शाम के 5:05 पर। तब तक के लिए बने रहे, सुनते रहे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे साइरन की आप
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। NEC ने डॉनर के तहत मई और जून 2026 के दौरान हिमाचल प्रदेश की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 19 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी की। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही नुकसान के लिहाज से 1950 के भूकंप के बाद की स्थिति से भी अधिक गंभीर। निशियलिस्ट सोसाइटी ने पापुमपारे जिले के तोरु सर्कल के अंतर्गत होज ताकते गांव में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का योगदान दिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत नॉर्वे हरित साझेदारी के तहत देश की पहली रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोन्स्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल AS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लोअर सुबनसिरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई रोग प्रतिरोधी टमाटर की किस्म अकारा भेद किसानों के अधिक उत्पादन, कम लागत और बेहतर आय का माध्यम बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। और अमेरिका के टेक्सास स्थित ग्लास स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियंस अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगी, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और

0: किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पूर्वोत्तर परिषद NEC ने केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय डॉनर के तहत मई और जून 2026 के दौरान स्कीम्स ऑफ NEC, सोनेक तथा नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम NESIDS के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 19,03,00,000 रूपये से अधिक की राशि जारी की है। ये धनराशि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, आजीविका तथा सड़क संपर्कों को सुदृढ़ करने में उपयोग की जाएगी। प्रमुख परियोजनाओं में अपर सियांग जिले के यिंग्क्योंग अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रावास, सापारिजो कीचो में पर्यटन परिसर, दिरांग में परसिमन प्रसंस्करण केंद्र तथा खारसांग में सुपरमार्केट सह पार्किंग सुविधा का निर्माण शामिल है। NEC ने NESIDS के तहत राज्य में सड़क सुविधाओं परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान की है। नाचो बैकवर्ड ब्लॉक विकास परियोजनाओं को पूरा किया है और ईस्ट नेस्ट ईगल फेस्ट को भी सहयोग दिया है। राज्यसभा सांसद ताई तागाक ने अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष केंद्रीय बाढ़ राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही, जनधन, आजीविका और आधारभूत संरचना के नुकसान के लिहाज से 1950 के भूकंप के बाद की स्थिति से भी अधिक गंभीर है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि राज्य के कई पान्योर, सियांग क्षेत्र, कुरुंगकुमे, तिराप सहित कई जिलों में भारी तबाही हुई है और लगभग 15 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रारंभिक आंकलन के 85,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हुई है तथा राज्य के सभी 28 जिलों में 1,00,000 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि यह आपदा राज्य की वित्तीय क्षमता से कहीं अधिक है और केंद्र सरकार ने शीघ्र सहायता, क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की तत्काल बहाली तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। निशियलित सोसाइटी NES ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के तोरू सर्कल के अंतर्गत होज डाकते गांव में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए 5,00,000 रुपए का योगदान दिया है। NES सेक्रेटरी इंजीनियर नाबाम ताकार ने के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूपिया में उपस्थित उपायुक्त लोपसांग शेरिंग को चेक सौंपा गया है। श्री ताकार ने राहत कार्यों में जिला प्रशासन के त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए समाज की ओर से हर संभव सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया। इससे पहले NES ने कई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावितों को राहत के लिए भी 10,00,000 रुपए की सहायता प्रदान की थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भारत नॉर्वे हरित साझेदारी के तहत देश की पहली 500 किलोवाट क्षमता वाली रिवर काइनेटिक एनर्जी डेमोंस्ट्रेशन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नॉर्वे की कंपनी टाइडल सेल AS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता अरुणाचल प्रदेश सरकार के सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज CESNHS और टाइडल सेल AS के बीच किया गया है। परियोजना का उद्देश्य बिना बड़े सिविल ढांचे के नदी की प्राकृतिक धारा से सीधे बिजली उत्पन्न करना, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में सर्वोच्च ऊर्जा उपलब्ध कराई जा सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री दासांग लोपुल ने इसे राज्य के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा शुरू की गई रोग प्रतिरोधी टमाटर की नई किस्म अर्का अभेद किसानों के लिए अधिक उत्पादन, कम लागत और बेहतर आय का माध्यम बन रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR द्वारा विकसित इस किस्म का वर्ष 2023 में किसानों के खेतों पर परीक्षण किया गया था, जिसके बाद वर्ष 2024-25 में इसे फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के तहत व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। ये किस्म टमाटर की 4 प्रमुख बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है तथा जिले में आर्द्र जलवायु में बेहतर प्रदर्शन करती है, जिससे कीटनाशकों और श्रम लागत में कमी आती है। इसकी उत्पादन क्षमता स्तर में 75 टन प्रति हेक्टेयर से है और लंबी शेल्फ लाइफ के कारण किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान

0: किया आज नई दिल्ली में 100वें 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को विकसित स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र को अपनाने का योगदान देने के लिए भी आग्रह किया है।
1: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
0: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह भी किया है।
1: आयुर्चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
0: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डलास में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घटा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: This is Akashvani, the news read by Narang Goyang. Prime Minister Narendra Modi today said that the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Agreement on Social Security, which came into force today, are a significant moment in the partnership between India and the United Kingdom. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added it will give a fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. The Prime Minister noted that it will also deepen cooperation in technology, professional services and innovation while supporting greater mobility for skilled Indian talent. On the Agreement on Social Security or Double Contribution Convention coming into effect today, the Prime Minister said it will provide invaluable support to Indian professionals working temporarily in the UK and strengthen the competitiveness of Indian enterprises. The Double Contribution Convention will reinforce the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. Modi noted that this moment reflects a trust between India-UK democracies and their resolve to build a forward-looking partnership driven by trade, technology, investment and innovation. The Prime Minister highlighted that India and the UK will continue working together for shared prosperity. The 11th anniversary of the Skill India mission is being observed today. Prime Minister Narendra Modi had launched the mission in 2015 to equip the youth with industry-relevant skill for employment, entrepreneurship and sustainable livelihoods. Skill India has empowered millions of youth with industry-level skills, creating opportunities for employment, entrepreneurship and nation-building. World Youth Skills Day is being observed today. It is celebrated every year on the 15th July after the United Nations General Assembly's declaration in 2014. President Draupadi Murmu has called for adopting the latest techniques in Ayurveda for the greater good of society. Addressing the inaugural function of Sushrutam 2026 in New Delhi today, the President said that the central government has established Ayurveda and yoga on a global stage with renewed energy. She expressed satisfaction that efforts are being made to establish the ancient tradition of Ayurvedic surgery on scientific standards. Union Home Minister has designated a new special court for the trial of offences investigated by the National Investigation Agency and other scheduled offences under the NIA Act across Maharashtra. The ministry has decided after consultation with the Chief Justice of the Bombay High Court and the Government of Maharashtra. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that times are changing rapidly and people now expect responsive transparent and

0: शता ये अगला गीत आप सुनेंगे, श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे नौकरी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ रंगजा वन बंगा बाजिसान पोडांगरे नंगलोक के प्रोग्राम चोतादन थजा जुलाई जंग छिवन बंगा तारीख बुध बजा खबर को हन तेलियन तांग जंग इंडिया ले यूनाइटेड किंगडम टुंगवा Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA ngingka katsuhi honmingoktapa thajapima ebang solevel ngale social security ngenang kam romerang double contribution convention agreement honmingoktapa ming thajapima yo ebang solevel are trade agreement pam bang solevel thako nangdiak tangni tuknang beha bepa trade honming he zero duty access hobida he komingwakla mejo diak tangni rang majo kam la pa huanmen raklama beha bepa trading pa eta huanmen wa thongwa donia

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

अब ये लम्हा थम जाए, ठहर जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। सुन रहे थे आप मेरे बिना निखिल डिसूजा के आवाज में फिल्म क्रुक से, और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। तो दोस्तों, इस हसीन शाम बस ड्राइव पे निकलने के साथ साथ अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकालिएगा जरूर। एक छोटी सी इवनिंग वॉक पे निकलिए, ताजी हवा का लुत्फ उठाइए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो ये रौनकें हैं। इसी नोट पर चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

बिल्कुल, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे बातें करने का। तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपका स्ट्रेस 5 मिनट में गायब कर देती है? जरा सोचिए। अब मेरे ख्याल से तो शायद वो एक कप गर्म चाय हो सकती है, दोस्तों से मुलाकात भी हो सकती है, या फिर आपका कोई फेवरेट गाना। अब आपके जवाब मुझ तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उम्मीद करती हूँ जो अगला गाना आपके लिए पेश कर रही हूँ आपको पसंद आए।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन जाइएगा कहीं नहीं, सफर जारी रहेगा। अब से कुछ ही क्षणों में लेकर आ रहे हैं अगला कार्यक्रम शाम की महफिल, और इस अंक में हम आपके लिए पेश करते हैं सोलफुल सूदिंग हिंदी फिल्मी नगमे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे संग बने रहेंगे और आनंद देंगे कार्यक्रम शाम की महफिल का। लौटेंगे कुछ ही पलों में।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

सॉफ्ट और सूदिंग बॉलीवुड ट्रैक्स के इस खूबसूरत सफर में आप सभी लिसनर्स का फिर से स्वागत है। सुनिधि चौहान की मधुर आवाज में आप सुन रहे थे भागे रे मन कही। और इसी तरह के नगमे को लेकर हम पेश करेंगे कार्यक्रम शाम की महफिल, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

कहते हैं कि जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। इसी बात पर आपको बताना चाहेंगे कि आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर और सुन रहे हैं सॉफ्ट सोलफुल बॉलीवुड ट्रैक्स का ये सफर कार्यक्रम शाम की महफिल।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम

0: हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: और दोस्तों, कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये अंक इसी गीत के साथ यहीं पर समाप्त होता है। फिर कहेंगे जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर बैक टू बैक हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, बस यही आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM पर।
1: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

कुमार सानू एवं अलका याग्निक की आवाज में अभी आप सुन रहे थे एक नया आसमान, फिल्म छोटे सरकार से। तो दोस्तों, इस नए अंक में यानी कि हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स के इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे, लेकिन थोड़े से ब्रेक्स के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, ब्रेक सिर्फ रेडियो प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक या फिर कहे तो थोड़ा सा ठहराव बहुत जरूरी होता है। इसी नोट पर चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

और दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आज के इस अंक में बस इतना ही। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। समाचार के तुरंत बाद हम फिर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम आज के कलाकार। बने रहे और सुनते रहे आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार डियर लिसनर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट, जी हाँ मैं हूं सुलोकना, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म तारजन का गीत, के और उनके साथियों के आवाज में। तो दोस्तों, आज के कलाकार है के। वैसे तो हम सब उन्हें सिर्फ दो अक्षरों के नाम से जानते हैं, के, लेकिन क्या आप उनका पूरा नाम जानते हैं? उनका असली और पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत। दिल्ली में पले बड़े एक मलयाली लड़के ने जब अपनी आवाज का जादू बिखेरा तो पूरा देश उनका दीवाना हो गया। जब हम स्कूल या कॉलेज के आखिरी दिनों में रोए तो बैकग्राउंड में उन्हीं की आवाज थी।

यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, सुनकर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। आप सुन रहे हैं आज के कलाकार सिर्फ मेरे साथ, यानी आपके रेडियो दोस्त सुलोकना। आप बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, अब आपको केके के बारे में एक रोचक जानकारी देते हैं। इतने मुश्किल हाई नोट्स और सुरों को छू लेने वाले केके ने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग यानी कि क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी। वे पूरी तरह से एक सेल्फ टॉट सिंगर थे। वे बचपन में

अपनी माँ के गाए गानों को टेप रिकॉर्डर पर सुनते थे और लेजेंडरी किशोर कुमार को अपना गुरु मानते थे। बस सुन सुनकर ही उन्होंने गाना सीखा।

तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में बातें कर रहे हैं के फिल्मों में आने से पहले उन्होंने 11 भाषाओं में 3,500 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जिंगल्स गाए, लेकिन जब ईयर 1999 में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गाना आया तो उन्होंने साबित कर दिया कि बिना ट्रेनिंग के भी सिर्फ दिल से गाकर इतिहास रचा जा सकता है।

दोस्तों वक्त आ गया है इस अंग से विदा लेने का। कार्यक्रम आज के कलाकार में आज के लिए बस इतना ही। चलते चलते छोड़े जाते हैं इसी आइकॉनिक गीत के साथ। आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में यानी कि 7 बजते ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार।

Sí, Akasvani, itana pokuma. Tel polga alo luri gola long na eji urum ka kene baje reme tan melim al mele srung ka nisi agum ar molenji grema. Tan gede ta coba srung ka nisi puyem ta pa chora jab jiran si nerma akom repu babla. Baro dala United Kingdom punyi ka Comprehensive Economy of Trade Agreement menam ham silo gol ke tulik rep ke Cuba ok sok thayolo Bharat ka United Kingdom lo alwa rekomengo lega ba Social Security ago lojin tulik tuaga misi tap kum ham mempa thado. Ok Bharat ga lo ka abar alar gochin Kama luk chin yara ham bagluk bagen muku bolo United Kingdom ge market lo acham kona gola kona farsente go ba terip menam lo rir kuna hamla men patato o ke Bharat la United Kingdom bani ge ara lo rigomengo ham at ate ge ni gud ge lega ba rigomengo ham alba regimenti rikna hamla agom a ham jaba sima pukna hamla jab gri kla soknem ribag mem pe ke mi se pukuna ma khamla mem pa tha do scheme of NAC or notice special infrastructure development scheme ara lok 2026 ni ga lechir pol la hil pol ga la ga ba donor ministry ara lok regola kona fuente om korol murko ham north eastern council NNC ha Arunachal Pradesh state la development project la ga ba yalen jip kum khamla mem pa do ओक सो के फांदे मुरको लोक सो हेल्थ केयर ग पले लोला सुतिपोता फुर्रिगो नामते लोला टूरिज्म ओक अलबे शिम गम गग्रिक ला गारेगोरा नामते गदहम अलबे मुलुक लिगनाते बरिर कुन हमला मेन पाता तो ओक सो के आरालो उबिगलो व येंक्योंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लो नर्सिंग हॉस्पिटल हम मुतु जिम गग्रिक ला दोनी फोलो गवर्नमेंट कॉलेज लो निजिर आ गद ग लगाव हॉस्टल में नम हम मुतु जिम गग्रिक ला शपर रेजो कुचो लो टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में नम हम मुतु मोग्रिक ला फर्टिशन प्रोसेसिंग सेंटर हम दरंग लो मुतु मुता मोप मद कुब रित्ता ग्रिक ला कारसांग लो सुपर मार्केट खाम फार्किंग यारा हम मुल्क मोता दो कुब मोप कुम हल में पाता दो ओके नोटिस स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम आरा लोक घारे गोरा नाम ते ग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा बला नाचो का बैकवर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम रिजेक्टमेंट जेक नाम दुकुब ओके ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल ते गुड हम तुलक त्वाग नादबे सोक मुल्यमर को पांदे हम नोट इस्तान कौंसिल है यागलें जिप को महम में पाता तो 1950 ini lo muid moha hekten la ni gudge dokta ke hamla dom ok yuk yara gudhem almadeb muju kunam ham poya ya ba sini ge Arunachal Pradesh state lo sibik ise ge kai alba bije jig rikla dedurra chek gute ke चक्के जिक लुक लो रोयग लोक अलवे हेंद्र कादोर जिद ब रिद कुन हम राज्यसभा के एमपी निगम नर्म ताइताका के जाप कुम हम में पादो ओक मोर्ग फोल आलो हो नर्म तागा के ये फुई निगिदने अवम आ जाप के ला रिद कुला सो सिबिक से गद ह कई फान्योर डिस्ट्रिक लोला सियांग डिस्ट्रिक गदा मेंगने गद लोला कुरुंकुम तिराप ओक उरुगोला आंग डिस्ट्रिक थेलोक अलब बिजे जिपकु महमला जपाताप कु महम तो ओक अचंपिने गोला आंग हजार हेक्टर से गोब नोनामपु ग गुड हम सिबे से ह बिजे जिग्रिक ला सो चेमनी गोला एनी डिस्ट्रिक लोक

0: बिल्कुल, आप सुन रहे थे निजी श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन करें आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है जिसे आप सुन रहे हैं FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही पलों में हम फिर हाजिर हैं लेकर हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारा अगला अंक भी आपको पसंद आए।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ना मिलो हमसे ज्यादा कहीं प्यार हो ना जाए, फिल्म बादल से। लेकिन अगला गाना जो प्लेलिस्ट में है वो कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है अभी आप सुनिए, और साथ ही बता दे रहे हैं कि आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां। पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे कुछ ब्रेक्स के साथ।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes. It's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
1: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: बिल्कुल श्रोता दोस्तों, यह है हिंदी फिल्मी गीतों का कारवा। सुन रहे हैं आप हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, और ये सिलसिला रात्रि के 8 बजे तक यूं ही चलता रहेगा। पेश कर रहे हैं बैक टू बैक हिंदी फिल्मी नगमे, लेकिन कुछ ब्रेक्स के साथ। तो चलिए और देरी किए बिना सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत फिल्म युवराज से।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: और दोस्तों, इन्हीं नगमों के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे क्षेत्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Namaskar. अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है और इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपकी रेडियो साथी गैर अत। आज का अपना गीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंगपो गीत से। इस गीत को गाया है जमैका खासा ने।

अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियाँ जैसे नीशी, तागिन, अपतनिक, गालो आदि स्वयं को सृष्टि का पहला मानव अबोतानी के वंशज मानते हैं। उसी तरह हर समुदाय के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है और सभी

के स्रोत अलग अलग भी है, पर एक समानता है सभी जाति या समुदाय में, और वो है उनकी परंपरा या संस्कृति का स्रोत। जी हाँ, हम आज जो भी है और जिस भी परंपरा के साथ है, उसका स्रोत तो हमारे पूर्वज ही है। इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और सदियों से चले आ रहे हमारे अमूल्य संस्कृति और परंपरा का संरक्षण भी करना चाहिए। तो चलिए इन्हीं बातों पर सुनते हैं अगला गीत, निशी भाषा में बिजनू नाबम की आवाज में।

कोकुन तिखक की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो अब तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, बारिश के बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। जी हाँ, बारिश हर एक इंसान में अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। जैसे जवानी बारिश में भीगना पसंद करते हैं, सूखे से बचने के लिए किसान बारिश के बूंदों को अमृत मानते हैं, मगर यही बारिश पहाड़ों में भूस्खलन पैदा कर हर तरह से लोगों को परेशान भी करती है। फिर वही बारिश में घर के अंदर बैठकर चाय की चुस्की लेना या फिर कंबल से लिपटकर सोने का भी एक अलग ही आनंद है। तो चलिए श्रोता, इसी बात पर क्यों ना हम बारिश पर एक गीत सुने। मोगेदो जी की आवाज में लीजिए पेश है एक आदि गीत।

आप सुन रहे थे नुक्ते गीत तावांग लोवांग की आवाज में। प्यार मोहब्बत में किसी के ओहदे, जात पात, रूप रंग नहीं देखा जाता, और अगर कहीं पर भी ये बीच में आ जाए तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत होती है जो महसूस कर सके। कहते हैं ना कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, सिर्फ तुमसे, तुम्हें तुम्हारे ही रूप में प्यार करे, और अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करता है तो वो प्यार नहीं, सौदा है। श्रोता मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना। चलिए अपना गीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गालो गीत रेरिक कार्लो दिग्बाक और मार्तो कामदा की आवाज में।

तो श्रोताओं, इसी गालो गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम श्रोता मित्रों को पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आप सभी श्रोताओं से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ देशभक्ति गीत और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी रेडियो साथी फ्लोरेंस शर्मा आपसे विदा लेती हूँ ये वादे के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार ठीक इसी समय फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के साथ।
1: सुन रहे थे आप यूथ प्रोग्राम, ये आकाशवाणी ईटानगर करुण एफएम है, जैसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही क्षणों में प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कारवा, भूले बिसरे गीत।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

चटक मटक एक नार नवेली गोरी गोरी ग्वाल नकी छोरी चली चोरी छोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ये ने पकड़ी बांह और की अटखेली भरी पिचकारी मारी सरा रा रा रा रा रा रा रा रा रा रा भोली परी हारी भोली।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13 ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

मांग के साथ तुम्हारा मांग लिया संसार। इसी गीत का आनंद उठा रहे थे आप ब्रेक से पहले फिल्म नया दौर से। श्रोता दोस्तों, सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों के कारवां भूले बिस्तर गीत में अगला गीत फिर है फिल्म नया दौर से। ओपी नैयर, मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले की आवाज में।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

और श्रोता दोस्तों, फिल्म जूली के इसी गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कारवा भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा के समापन की ओर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैरेते तथा तकनीकी अभियंता तानातुम और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही पलों में हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड की ओर। आप सुनेंगे FM गोल्ड से रिलेट कार्यक्रम। हम आप सभी से कल सुबह फिर मिलेंगे 5:48 से। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एस पी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: कभी कभी इतिहास युद्धों से नहीं बल्कि समझौतों से लिखा जाता है। ऐसे समझौते जो सीमाओं को नहीं संभावनाओं को जोड़ते हैं, ऐसे समझौते जिनकी गूंज केवल बंदरगाहों और बाजारों तक नहीं बल्कि उद्योगों, खेतों, कारखानों, स्टार्टअप्स और करोड़ों युवाओं के भविष्य तक सुनाई देती है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता सेटा भी कुछ ऐसा ही कदम है। ये सिर्फ आयात निर्यात बढ़ाने का समझौता नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। वहीं ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन भी नए आर्थिक साझेदारों के साथ अपने भविष्य की नई इबारत लिखना चाहता है।

0: लेकिन हर बड़े अवसर के साथ कुछ बड़े प्रश्न भी आते हैं। क्या ये समझौता दोनों देशों के बीच 100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को समय से पूरा कर पाएगा? क्या ये लिविंग ब्रिज को आर्थिक महासेतु में बदल पाएगा? क्या इससे मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या ये समझौता केवल व्यापार बढ़ाएगा या भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक संबंधों को भी नई ऊंचाई देगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के इस विशेष चर्चा का विषय है कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं दो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, डॉक्टर ए के भट्टाचार्य और डॉक्टर एस पी शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया,
2: नमस्कार।
0: डॉक्टर शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन ने कई देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, ऐसे में ये जो भारत के साथ समझौता हुआ है, इसे आप कैसे दूसरे समझौतों से अलग देखते हैं? और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में इसके प्रमुख पहलुओं पर भी आप थोड़ा प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि ब्रेग्जिट के बाद यूके ने काफी देशों से समझौते किए हैं। यूके एक बहुत ही डायनामिक इकोनॉमी है और वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और यूके का जो आगे का चलन है, जो यूके का एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है और जो यूके की एक रेजिलियंस है, वो सभी को मालूम है। सभी देशों में यूके अपनी रेजिलियंस के तौर पे माना जाता है। तो यूके ने अपना जो ट्रेड ट्रैजेक्टरी को और जो अपना इकोनॉमिक होराइजन्स है उनको इंक्रीज करने के लिए जो व्यापार समझौते किए, पहले किए और जो भी इंडिया के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्टोरिक एग्रीमेंट बन गया है, तो उसमें खास बात यह है कि एक तो दोनों ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज हैं। एक तो इस तरीके से दोनों में जो एक आदान प्रदान है, दोनों में जो एक संभावना है, वो बहुत ही उत्तम है। और दूसरा, जो एक हम कॉम्प्लीमेंटरिटी की बात करते हैं कि कई बार दोनों ही इकोनॉमी कॉम्पेटिटिव होती हैं तो उनमें खास जो इकोनॉमिक और ट्रेड डील्स नहीं हो पाती हैं, ट्रेड ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपटीशन में हैं। लेकिन हमारा यूके के साथ ऐसा नहीं है, हम एक कॉम्प्लीमेंटरी इकोनॉमी है। जैसे हम ज्यादातर जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, यूके हमें जो हाई एंड कैपिटल इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करता है। तो एक जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हमारे कंट्री में है, ज्यादातर जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम यूके से लेते हैं और आगे और ज्यादा लेंगे। और दूसरा, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमारे जो लेदर है, हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, हमारा जो स्टील है और ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो ज्यादातर हम यूके को और तगाद में आगे दे पाएंगे, जो कि हमें 99% जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें मार्केट एक्सेस दिया गया है। जैसे ये तो एक बात होगी ट्रेड के बारे में कि ट्रेड में गिव एंड टेक है, बहुत ही एफिशिएंट है। हम जो प्रोडक्ट्स उनको देंगे वो उनमें हम कंपटीशन में नहीं है, उनको भी जरूरत है और हमें भी उनके जो हाई एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जरूरत है। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है वो है, हम एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग इकोनॉमी और यूके एक वन ऑफ द एडवांस्ड इकोनॉमी है। एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट्रिटी है, जो हमारा लक्ष्य है एक विकसित भारत बनने का 2047 तक, उसमें भी हमें काफी अच्छी हैंड होल्डिंग मिलेगी, क्योंकि यूके एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी से। कुल मिला के जो ये एग्रीमेंट है, ये ट्रेड एग्रीमेंट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के लिए, जो मिलके आने वाले टाइम में जिस तरीके की हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, तो दोनों की आपसदारी के जो आगे बढ़ने का जो तौर तरीका रहेगा, तो ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी एक आगे एक नई दिशा प्रदान करेगा। दोनों ही इकोनॉमी जो है वो सर्विस ड्रिवन भी है। इंडिया में लगभग कोई 55% का सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, इससे भी ज्यादा यूके में 70% का कंट्रीब्यूशन जो है सर्विसेज का जीडीपी में रहता है। तो सर्विसेज में भी ये बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं और आगे अपने ट्रेड को बहुत अच्छा बढ़ावा दे सकते हैं।
0: जी हाँ, इस समझौते के तहत भारत के लगभग 99% निर्यात को यूके में शून्य आयात शुल्क का लाभ मिलेगा, जिससे लगभग 100% व्यापार मूल्य कवर होगा। भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, चमड़ा, फुटवेयर, इंजीनियरिंग सामान, ऑटो कंपोनेंट, समुद्री उत्पाद, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल्स और दवा उद्योग में बड़ा लाभ मिलेगा। यूके में कई उत्पादों पर लगने वाला 70% तक का आयात शुल्क अब समाप्त हो जाएगा। भारत आईटी, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज सहित 137 सेवा उप क्षेत्रों को बेहतर बाजार और नए अवसर मिलेंगे। समझौते के तहत बिजनेस विजिटर्स, इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी, स्वतंत्र पेशेवर, निवेशकों और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आवाजाही आसान होगी। डॉक्टर भट्टाचार्य, ये तो मोटी मोटी बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो गई। जो आकाशवाणी के श्रोता गांव से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी? क्या वोकल फॉर लोकल को गति मिलेगी, इन सबसे जमीनी

0: स्तर पर क्या बदलने वाला है?
1: देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जो सेटा जो की जो टर्म्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं। उसमें अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए 99% जो ब्रिटेन के जो आयात जो हैं भारत से, उसमें टैरिफ विलय हो गया है, पर इंडिया की जो टैरिफ जो है उसमें सिर्फ 89% टैरिफ आइटम्स में उनकी कम हुई है। उसका मतलब ये है कि जो हमारी जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो खाद्य वस्तुएं, जो सीरियल्स जो हैं, या मिलेट्स कहिए, या जो एडिबल ऑयल्स कहते हैं, या दलहन ऑयल सीड्स, या एप्पल बोलिए, या बहुत सारे हमारे जो वेजिटेबल्स जो हैं, वो सारे क्षेत्र में ये एग्रीमेंट लागू नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेंसिटिव सेक्टर्स जो हैं उन सेक्टर्स को इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर अगर आप देखें कि डेवलप्ड मार्केट यूके के होते हुए इस वक्त जो हमारी जो जो आंकड़े हैं वो जरा समझने चाहिए। यूके जो है वो करीबन 928 बिलियन आयात करता है विभिन्न देशों से, पर उसके अंदर हमारा जो उनका जो शेयर जो है वो बहुत ही कम है। इसका मतलब ब्रिटेन की इंपोर्ट में भारत का जो योगदान है वो 2% से भी नीचे है। तो मैं ये समझता हूं कि अब जो सेक्टर्स खुले हैं वो अगर आप देखें तो जैसे गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, ब्रिटेन इंपोर्ट करता है करीबन 21 बिलियन और उसमें से हमारा शेयर है सिर्फ 1.5 बिलियन, इसका मतलब 6%। अगर आप देखें कि जो टैरिफ जो है, टैरिफ घट रही है बहुत ही, जैसे 70% टैरिफ है प्रोसेस फूड्स के ऊपर वो घट के जीरो हो रही है। मेरीन प्रोडक्ट्स में 21% है उसमें जीरो हो रही है। इंजीनियरिंग गुड्स जो और एक क्षेत्र है भारत के लिए बहुत अहम रखता है उसमें 18% था उसमें जीरो हो रहा है। ऑटो कंपोनेंट्स वो बहुत बड़ा सेक्टर है उसमें 18% है जीरो हो जाएगा। लेदर एंड फुटवेयर में 16% था उसमें जीरो हो जाएगा। और टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स में 12% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। और केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में 8% था उसमें भी जीरो हो जाएगा। ये सारे सेक्टर में जैसे मैंने गारमेंट में जैसे कहा हमारा शेयर सिर्फ 6% है वो मैं समझता हूँ बढ़ जाएगा काफी। उसी तरह प्रोसेस फूड्स में इंडिया का शेयर यूके के टोटल इंपोर्ट में 1% है वो भी बढ़ जा सकता है। ऑटोमोटिव में देखेंगे तो उसमें भी 1% से कम है। केमिकल्स फर्टिलाइजर्स में बहुत ही 3% का है। इंजीनियरिंग गुड्स में 5% का है। ऐसे सारे चीज को अगर आप देखें तो भारतीय इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स, प्रोसेस फूड और गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स, इन सारे क्षेत्रों में जो काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव है, जॉब इंटेंसिव है, इनका जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जो यूको है, और यूको जैसे मैंने कहा ये सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा आयात करता है पर हमारा शेयर बहुत कम है इस वक्त, तो सेटा के बाद जब 0% ड्यूटी में आ जाएंगी ये सारी वस्तुएं तो मुझे लगता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, हमारी डोमेस्टिक एमएसएमई सेक्टर है, जॉब क्रिएशन की जो क्षमता जो है अर्थनीति की, उसमें काफी एक पॉजिटिव प्रभाव आएगा। उसके साथ साथ जो आपने जो जिक्र किया इंडियन सर्विसेज में, इंडियन सर्विसेज में करीबन 1800 इंडियन शेफ, योगा इंस्ट्रक्टर या जो गाना गाते हैं क्लासिकल म्यूजिशियंस जो हैं, उनके लिए एक सालाना वीसा का एक बहुत बड़ा एक ऐलान किया गया है। उसी के साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उसमें भी सर्विसेज सेक्टर में ऐसे 137 सर्विस के सब सेक्टर्स हैं उसमें ये ट्रेड एग्रीमेंट को लाया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस एग्रीमेंट से ना कि भारत की जो सेंसिटिव सेक्टर को है उसमें कोई धक्का पहुंचने का डर है, उसके साथ साथ जो हमारी जो एमएसएमई सेक्टर है ये सारे सेक्टर्स में और जो हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो जो यूके की जो मार्केट में जा सकते हैं। इस वक्त जो भारतीय जो प्रोफेशनल्स वहां पे रहते हैं या एम्प्लॉयज रहते हैं उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो डबल हो जाती है। उनमें जो एग्जेम्पशन जो होती है वो हर जगह दोनों जगह टैक्स करते हैं, एक डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो सोशल सिक्योरिटी में देना पड़ता है उनको, तो उसे वहां पे भी देते हैं और यहाँ पे भी देते हैं। इस एग्रीमेंट में उसका एक बहुत बड़ा फैसिलिटी दी गई है। वो सब चीज को देखते हुए मैं समझता हूं कि भारत की जो आर्थिक क्षमता जो है, बिजनेस की जो जो कंट्रीब्यूशन जो है उसमें काफी इजाफा होगा।
2: जी डॉक्टर शर्मा, जब हम बात एफटीए के करते हैं तो कई सारे मादक पदार्थें हैं और ब्रिटिश ऑटोमोबाइल्स पर भारत के उच्च आयात शुल्क हमेशा से विवाद का विषय रहे हैं। वहीं भारत यूके के कृषि बाजार में बेहतर पहुंच भी चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि रूल्स ऑफ ओरिजिन को प्रभावित किए बिना दोनों देश एक ऐसा संतुलन कैसे बना सकते हैं जो भारतीय घरेलू उद्योगों को

0: नेगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रेजुअली जो है हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारी मार्केट में एंटर करेंगे, साथ साथ में हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। हमारी जो सरकार ने पीछे जो काफी वर्षों से जो फोकस किया है हमारे इनोवेशन के ऊपर, हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर, तरह तरह की जो स्कीम्स हैं, खास करके जो PLI है उसके ऊपर फोकस मद्देनजर, हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तभी तो हम ऐसे FTA करने के काबिल बने हैं। अब देखें कि हमने 2011 के बाद 20 तक लगभग 9 साल कोई FTA साइन नहीं किया। जब हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया उसके बाद ही हमने FTA शुरू किए, मॉरिशस से शुरू होकर अभी हम आज UK इंप्लीमेंट हो गया है। तो एक सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक ग्रेजुअल प्रोसेस में ये डिसीजन लिया गया है, जिससे कि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो के जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं हमारी मार्केट को फ्लड कर दें और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाए। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें कुछ कोटा भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुछ एक प्रोसेस रखा गया है कि जो जीरो टैरिफ है वो आने वाले काफी साल में जाके जीरो पे आएगा, जो कि एक हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करने का एक अच्छा चांस देगा।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर हम बात करें डेटा प्राइवेसी और डिजिटल ट्रेड पर, जो कि आजकल बहुत ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो भारत और यूके दोनों ही डिजिटल इकोनॉमी के बड़े केंद्र हैं। यूके क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो पर लचीलापन चाहता है, जबकि भारत अपनी डेटा संप्रभुता और घरेलू कानूनों को लेकर बेहद गंभीर है। आपको क्या लगता है कि इस समझौते में दोनों देश इस डिजिटल खाई को पाटने में सफल होंगे और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है?
2: देखिए, जो डिजिटल जो इश्यूज जो आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें भारत का जो स्टैंड जो है वो अभी भी बरकरार है कि डिजिटल की जो लोकल प्रोटेक्शन जो चाहिए हमें, डेटा, जैसे कहते हैं कि डेटा इज द न्यू ऑयल, तो डेटा की जो प्रभुता जो है वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इस एग्रीमेंट से उस डेटा सॉवरेंटी के ऊपर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, तो पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि जो आपने जो रूल्स ऑफ ओरिजिन की जो बात की, उसमें एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक सेटा का एक प्रोविजन है, उसमें रूल्स ऑफ ओरिजिन का जो सर्टिफिकेट देने का और उसको मान्यकरण करने का जो प्रोसेस जो है, जो प्रणाली जो है, वो बहुत ही सरल की गई है। उसमें अगर आप जो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक नया सिस्टम चालू किया जा रहा है, वो 15 जुलाई से ही चालू हो गया है, कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन 30% या 40% आपकी कंट्री से बन रही है, इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर ये निर्धारित होगा और इसको चेक करेंगे, अगर वो कोई गलत सर्टिफिकेशन दे रहा है उसको चेक किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जो भारत की जो बहुत सारे जो FTAs जो है और उसकी जो लो यूटिलाइजेशन जो एक चिंता होती है, मैं समझता हूँ ये रूल्स ऑफ ओरिजिन के नियम को सरलीकरण करने से ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा भारतीय एक्सपोर्टर को और भारतीय इम्पोर्टर को भी। समय आने पर हमारी भारतीय इंडस्ट्री एक्सपोर्टर्स को हमें फायदा मिलेगा।
1: डॉक्टर शर्मा, थोड़ी देर पहले हम चर्चा सर्विस सेक्टर और मोबिलिटी की भी कर रहे थे, थोड़ा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत IT और प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। हम हमेशा मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी का मतलब पेशेवरों के लिए आसान वीजा की हम मांग करते रहे हैं और ये यूनाइटेड किंगडम के लिए एक संवेदनशील घरेलू मुद्दा है। सर्विस सेक्टर में भारत के हितों की रक्षा करते हुए इस अग्रीमेंट से इस गतिरोध को कैसे सुलझाया जा रहा है?
0: देखिए, इसमें जो सर्विसेज की हमने बात की पहले भी की, के बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू दोनों कंट्रीज को मिलेगी, दोनों ही सर्विस ड्रिवन कंट्रीज हैं, 70% UK है और लगभग कोई 55% का शेयर इंडिया में रहता है। तो इस दिशा में जो हमारे लिए ओपन की गई है मार्केट सर्विसेज में, जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो हमारी IT सर्विसेज हैं या फिर हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं या फिर हमारी एजुकेशन सर्विसेज हैं या फिर हमारी जो अदर प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, तो उनके लिए एक प्रोविजन में उनको आगे मार्केट एक्सेस दी जाएगी, उनको कोई ऐसी वीजा की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी उन रूल्स के अकॉर्डिंग, और वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं। और जो प्रोफेशनल्स हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए वहीं पे एजुकेशन करके वहीं पे ही सेटल होने का और वहीं पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक माध्यम भी बनेगा, जो कि FTA आगे दर्शाता है कि उनको आगे मार्केट एक्सेस मिलेगी, वो आगे वहां पे ही अपना जो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये समझता हूं कि जो अभी हमारा ट्रेड है उसमें भी ज्यादातर जो प्रोपोर्शन है वो सर्विसेज का ही है। अगर हम मर्चेंडाइज ट्रेड की बात करें तो लगभग कोई 23-24 बिलियन डॉलर है और टोटल ट्रेड है 58 बिलियन डॉलर, तो लगभग कोई आपका 33-34 बिलियन डॉलर जो है वो सर्विसेज से होता है। ये बिफोर FTA की बात है। आप देखिए कि जो सर्विसेज है ट्रेड, दैट इज डोमिनेटिंग द मर्चेंडाइज ट्रेड बिफोर द FTA। अभी एफटीए के बाद

0: आगे का क्या रहेगा, मैं समझता हूं कि दोनों, खैर ज्यादातर हमें जो एक्सेस है जिसके लिए हमने एफटीओ को ज्यादा तवज्जो दी है, हमें मर्चेंडाइज में एक्सेस हमें और ज्यादा चाहिए थी जिसके लिए हमारा ये एफटीए भी हुआ, तो मर्चेंडाइज अब जाके सर्विसेज के ट्रेड को भी आगे कंपीट कर सकता है, बराबर हो सकते हैं, जो भी ये अनुपात है 23-24 और 33-34 का। मैं समझता हूँ कि जब हमें मर्चेंडाइज में और एक्सेस मिल रही है, हमें जीरो टैरिफ के ऊपर हम ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारा जो ब्रेक थ्रू है वो हमारे जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में उसमें और ज्यादा आगे प्रगति करेगा। और ये नहीं कि सर्विसेज में हमें कोई ऐसा चैलेंज रहेगा, सर्विसेज में ही इक्वली हम आगे ग्रो करेंगे, लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटी बनेगी वो हमारे लिए मर्चेंडाइज में, हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोफेशनल्स को हमारे सर्विसेज सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर थोड़ी चर्चा सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स की करें तो वैश्विक स्तर पर चाइना प्लस वन रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड किंगडम के लिए भारत के साथ ये समझौता सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, और क्या ये सिर्फ व्यापार है या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक बड़ा रणनीतिक गठबंधन भी हम देखने जा रहे हैं?
2: देखिए, अगर आप इसको वैश्विक स्तर में मापें तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की जो टैरिफ पॉलिटिक्स या टैरिफ जो उन्होंने वेपनाइज किया था, उसके बाद ये सारे जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो एक पुश मिला है, भारत ने एक दर्जन करीबन एग्रीमेंट्स साइन कर ली हैं ऑलरेडी, यूके उसी में से एक है। इसका कारण है कि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी जो है, वहां पे जो फ्री ट्रेड की जो एक वातावरण था, वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तार से जो संभव हुआ था, उसमें काफी एक धक्का पहुंचा था। तो मेरा मानना यह है कि जो इतने सारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आजकल हम देख रहे हैं, वो इसी का फलस्वरूप है कि वर्ल्ड ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक मल्टीलैटरल ट्रेडिंग ऑर्डर जो सिस्टम जो है, उसमें एक काफी एक धक्का मिला है उसको, और इसीलिए बहुत सारे देश और एक भारत ने पॉलिसी तय की है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट के साथ ज्यादा मिलकर हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो

हम अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करेंगे। इसीलिए अगर आप देखें कि ये जो ईयू को मिला के करीबन 35 ऐसे देश हैं, ईयू को मिला के मैं कह रहा हूँ, एफ्टा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं, उसी में सब हमने डेवलप्ड मार्केट्स में किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो

0: मैं समझता हूं कि अगर वैश्विक दृष्टिकोण से देखें ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, और इसमें जैसे शर्मा जी ने भी कहा ये मर्चेंडाइज हमारी जो ऑलमोस्ट 50% रोकथाम लगेगी, सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी, और वो क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो कॉस्ट होती है जो 15-20% की जो एक्स्ट्रा ड्यूटी उसका जो लगेगा, पर इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट की जो पेस जो है, रफ्तार जो है, वो भी बढ़ेगी।
1: जी डॉक्टर शर्मा, थोड़ी बात अगर हम एमएसएमई की कर लें तो इस समझौते से उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है?
2: देखिए, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादातर एमएसएमई डोमिनेटिंग ही है, और दूसरा जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है अभी एमएसएमई के अंडर ही आती है, लगभग कोई 95% से ज्यादा तो अभी हमारी कंपनी जो है एमएसएमई में ही है, और खास करके जो सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अपैरल है, लेदर एंड फुटवियर है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, और ऑटो कंपोनेंट्स, टॉय एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी एमएसएमई डोमिनेटिंग सेक्टर ही हैं। तो अब ज्यादातर जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि एक बहुत स्ट्रांग कॉम्प्लीमेंट्रिटी है कि हम उनसे ज्यादातर जो हाई एंड प्रोडक्ट्स, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, वो हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और आगे उनका और ज्यादा प्रभाव बढ़ेगा। और हमारी तरफ से जो एमएसएमई ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी ये सभी प्रोडक्ट्स जो जिनके कुछ मैंने नाम बताए चुनिंदा प्रोडक्ट्स के, तो इनको और ज्यादा आगे ब्रेक थ्रू मिलेगी। तो कुल मिला के जो एमएसएमई के हित हैं उस मद्देनजर उनको आगे सामने रखा गया है कि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सेस मिले, उनकी जो कनेक्टिविटी है विद द ग्लोबल वैल्यू चेन्स वो और ज्यादा इंक्रीज हो, और हमारे जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स हैं उनको आगे और ज्यादा, उनको जब मार्केट एक्सेस मिलेगी तो उनका जो शेयर है और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो एमएसएमई का कॉम्पिटिटिवनेस है, जो एमएसएमई का एक वॉल्यूम क्रिएट करने की बात होती है, क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड है और जो इंटरनेशनल डिमांड भी आएगी, जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, खास करके ये जो अभी हमारा इम्प्लीमेंट हो गया है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इंक्रीज होंगे जब उनके वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे। तो कुल मिला के जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे एमएसएमई सेक्टर की और ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और उनको और ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलने की, और उनके और ज्यादा सप्लाई चेन में कनेक्ट होने की संभावनाएं जो है वो आगे बनी है इस एफटीए के अंतर्गत।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य, अगर भारत के युवाओं के नजरिए से एक सवाल मैं आपसे करूं कि इस समझौते से रोजगार सृजन के क्षेत्र में किस तरह की संभावना और बढ़ने की उम्मीद है?
0: देखिए, अगर आप रोजगार की बात देखें तो पहली बात तो यह है कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो लो लेवल जॉब्स में जो जरूरतें होती हैं वो गारमेंट टेक्सटाइल्स या प्रोसेस फूड, ऑटोमोबाइल्स या ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, जो इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारे चीजों में, सब चीजों में जो हमारी जो ड्यूटी जो है हमारे एक्सपोर्ट में वो अब जीरो में आ चुकी है। नाउ जीरो में आने का मतलब यही है कि जो सारी जो कंपनियां जो हैं उसमें ज्यादातर एमएसएमई हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वो एम्प्लॉय करते हैं, हमारी युवा पीढ़ियों के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, गांव गंजों से वो एम्प्लॉय होती है, उनको नौकरी मिलती है, उनके लिए अगर वो एक्सपोर्ट्स का अगर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाए तो मैं समझता हूं कि उनके लिए भी नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। और दूसरी ओर जैसे मैंने कहा कि एक जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन जो हमने साइन किया है अलॉन्ग विद सीटा के साथ जो हुआ है, उससे करीबन 75,000 इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं, जो नौकरी पेशाजीवी जो हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो ये भी एक नौकरी के क्षेत्र में इसका एक योगदान है। और सर्विसेज सेक्टर में तो आईटी एनेबल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत सारे जो हमारे आईआईटी से, आईआईएम से जो लड़के लड़कियां निकलती हैं, बाहर ग्रेजुएट करते हैं, उनके लिए हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, कंसल्टिंग में, ये सर्ज हर जगह मैं समझता हूँ कि जो नौकरी की जो अवसर होती है वो उनकी वृद्धि जरूर होगी।
1: डॉक्टर शर्मा, जब भी दो देशों के बीच कोई समझौता होता है तो दोनों देश अपने अपने तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बतौर अर्थशास्त्री, भारत और यूनाइटेड किंगडम अगले 5-10 वर्षों के लिए किन लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे?
2: देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा लक्ष्य है वो है ट्रेड ट्रैजेक्टरी को आगे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो ट्रेड है वो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल नहीं है। दोनों ही बहुत प्रेस्टिजियस इकोनॉमी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज है, और एक मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी और एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो लक्ष्य है कि इस ट्रेड को हम कैसे मल्टीप्लाई करें, और जैसे ऑलरेडी हमने रख लिया है कि लगभग कोई 100 से 120 बिलियन डॉलर का हमारा लक्ष्य होना चाहिए 2030 तक। उसके बाद ये संभावना है कि ट्रेड जो है हरेक 5-7 वर्षों में।

0: आगे और डबल हो और हमारा जो विकसित भारत का एक ऑब्जेक्टिव है उस तक जाते जाते हमारा ट्रेड मैनीफोल्ड आगे इंक्रीज हो जाए। और इसमें डिफरेंट बात क्या है कि जो वैसे तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, हम अपना टैरिफ कम कर देते हैं और हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, लेकिन इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है उसमें 29 कॉम्प्रीहेंसिव चैप्टर्स हैं जो कि गुड्स को कवर कर रहे हैं, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, डिजिटल ट्रेड को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कस्टम प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को, लेबर को, एनवायरमेंट को, कंपटीशन पॉलिसी को एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट। एक सबसे बड़ा जो कई बार मुद्दा रहता है दो देशों के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो भी इन्होंने उसको भी एक चैप्टर डिवोट किया है, उसके लिए भी प्रोविजन बनाए हैं। और इनोवेशन तो एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए हैं और सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो आपने बात की कि कैसे ये एफटीए जो है इनको सपोर्ट करेगा। अब उसका एक ड्यूअल एडवांटेज है, एक तो एमएसएमई की सपोर्ट के साथ उनका जो ट्रैजेक्टरी है, जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी इंक्रीज होगा, और जब उनका डिमांड इंक्रीज होगी दूसरे देशों में, खासकर अभी जो हमारा एफटीए इंप्लीमेंट हो गया है यूके के साथ, तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे तो वो और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में क्रिएट करेंगे। दे विल डिप्लॉय मोर एंड मोर वर्कर्स इन देयर रिस्पेक्टिव प्रीमाइसेस। जब उनका इकोनॉमी जॉब स्केल होने के बाद जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज है और ज्यादा इंक्रीज होंगी और वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के नए अवसर खुलेंगे और हमारे जो युवाओं के लिए नए अवसर नौकरी लेने के लिए खुलेंगे।
1: डॉक्टर भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, संक्षेप में आपसे आखिर में जानना चाहेंगे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में ये समझौता कितना सहायक है?
2: ये समझौता जरूर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इस लक्ष्य को हासिल करने में। इसके साथ साथ जो ये लक्ष्य हासिल करेगा, हमारी जो आर्थिक जो लक्ष्य जो है वो एक इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी जोर दिया है इसने, तो ये जो ग्रोथ जो होगा ये काफी इंक्लूसिव होगा, हर वर्ग के लोग और सेक्टर के लोग इसके लाभ उठा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसिंग एग्रीमेंट साबित होगा।
1: जी, आज की चर्चा से स्पष्ट है कि भारत यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता महज कुछ वस्तुओं पर टैक्स कम करने का दस्तावेज नहीं है। ये 21वीं सदी की दो बड़ी शक्तियों के बीच आपसी विश्वास, आर्थिक संप्रभुता और साझा भविष्य का एक नया घोषणा पत्र है, जहां भारत को अपनी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा ग्लोबल मार्केट मिलेगा, वहीं यूके को भारत के रूप में एक भरोसेमंद और विशाल आर्थिक साझेदार प्राप्त होगा। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो रास्तों की रुकावटें भी सेतु बन जाती है। डॉक्टर शर्मा, आपका, डॉक्टर भट्टाचार्य, चर्चा का विषय कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: शुक्रिया, थैंक यू,
3: धन्यवाद।
4: अभी आप सुन रहे थे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते से सुदृढ़ पारस्परिक संबंधों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक ए के भट्टाचार्य और एसपी शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
5: चर्चा का विषय है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमिकॉन मिशन के दूसरे चरण के अंतर्गत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त कराने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत के भारत और ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा भाव से काम करने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसके बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के अंतर्गत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। यमुना के किनारे कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन भी किया जाएगा। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमलों में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार के प्रवक्ता फतेह मेह मोहजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फुटबॉल फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced about the Cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnav said building on the

0: Momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting in down the global semiconductor map. He informed that investment worth 4 lakh crore rupees is expected under Semicon 2.0.
1: Semicon 2.0.
2: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
0: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. He said the scheme is aimed at scaling up domestic mobile phone production, deepening local value addition, and strengthening India's position as a global electronics manufacturing hub. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Mr. Vaishnav said the other project is related to the development of around 43-kilometer long 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna River Bank in Varanasi City in Uttar Pradesh at a total capital cost of around 11,000 crore rupees. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero-duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till the 3rd of August. Tensions in West Asia have escalated after the United States reimposed a naval blockade on Iran amid fresh exchanges of strikes between the two countries following attacks on vessels in the Strait of Hormuz. The U.S. military central command said the latest strikes were aimed at reducing Iran's ability to target commercial shipping in the Strait of Hormuz, a key route for global energy supplies. Iranian officials said U.S. strikes hit an army barracks, killing at least 7 troops. Meanwhile, Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps claimed it carried out retaliatory strikes against U.S. military facilities in Bahrain and Jordan, targeting command centers, aircraft shelters, and other strategic locations. 3 Indian women boxers won gold medals, while 10 others claimed silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 championships in Jakarta today. In FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on England in the second semi-final match at Atlanta in the US tonight. The match is scheduled to begin at 12:30 a.m. Indian time. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashwani Samachar ke saath, main Arun Kumar. विश्व दर्पण में आज के मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आग्रह किया, चेतावनी दी कि निष्क्रियता वैश्विक जनविश्वास को कम कर रही। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार तथा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
4: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक है।
3: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से,
5: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
3: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज यूरोपीय संसद की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्नर्ड लैंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और इससे दोनों देशों के व्यवसायों, उद्योगों और लोगों को मिलने वाले व्यापक अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस शेफकोविच से भी मुलाकात की। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकल पाने से वैश्विक जनविश्वास कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उसकी क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
6: श्री हरीश ने कहा कि 80 वर्ष पुरानी संयुक्त राष्ट्र संरचना मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अब उपयुक्त नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए समझौते के अंतर्गत कार्य सूत्र सिर्फ कागजों में बनकर रह गए हैं। इस समझौते में हिंसा, नस्लवाद और विदेशियों से नफरत समाप्त करना, समानता को बढ़ावा देना और शांति स्थापना को मजबूत करना शामिल है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आम सभा को पुनः सशक्त करना और सतत विकास में प्रगति के लिए आर्थिक तथा सामाजिक परिषद की भूमिका को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। अल्प विकसित और विकासशील देशों पर श्री हरीश ने कहा कि भारत इन देशों में संसाधनों की आवाजाही के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि

0: भी देश पीछे ना रहे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संसाधनों से अधिक प्रतिनिधित्व, जवाबदेह और विकासोन्मुख बनने का आह्वान किया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारियावा से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि नवाचार केंद्रों, स्टार्टअप और होराइजन यूरोप के साथ सहयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। भारत और पोलैंड ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए आज नई दिल्ली में वार्ता की। बैठक में आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकी उप मंत्री मिशेल बारानोवस्की के नेतृत्व में पोलैंड का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ। भारतीय पक्ष का नेतृत्व एमएसएमई सचिव भरत खेरा ने किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना के बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेह मेह मोहाजेरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकेबंदी फिर से लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों और दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण जल मार्ग के बारे में नई धमकियों ने अंतरिम शांति समझौते को खत्म कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने आज धमकी दी कि नाकेबंदी के कारण पश्चिम एशिया से ऊर्जा का निर्यात रोक दिया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ब्रिटेन में सरकार ने आज 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है। ये कदम किशोरों को ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा लत लगाने वाली चीजों से बचाने के लिए उठाया गया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। कल रात पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत टैक्स के तहत एक ही छत के नीचे भारत की पूर्ण टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को लाने की प्रक्रिया पर वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा का लेख साझा किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये पहल देश की विनिर्माण शक्ति, समृद्ध वस्त्र विरासत और विस्तारित होती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आग्रह किया। चेतावनी दी कि निष्क्रियता वैश्विक जनविश्वास को कम कर रही है। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते। और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमरीका के अटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement and Associated Social Security Pact became fully operational. Indian goods worth $140 million exported to UK on the first day. India urges for UN Security Council reforms, warns inaction is eroding global public confidence. टेंशन्स